ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक्षमवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। तत्पश्चात आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार

सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दया परः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से भरा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से तुरंत बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 240। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका 5वां भाग आज आप सुन सकेंगे। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर। संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुन सकेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 रात्रि 11 से विविधा, इसके अंतर्गत भरत व्यास, चेतन आनंद और मोहम्मद अजीज की चर्चा। दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 से सुरीला सफर, दोपहर 2 से त्रिवेणी।

दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे मनचाहे गीत सुन सकेंगे। दोपहर 3 बजे से 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक मालविका अग्निमित्र का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे। मूल संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास की है और हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत का। पिटारा शाम 4 बजे से, इसके अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत रीमा अमरापुर पक्कर से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण, तराने नए पुराने शाम 5:30 से। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 से। विशेष जयमाला शाम 7 बजे से, इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत सुनिएगा असिस्टेंट कमांडर रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज़।

रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका बहादुर की शादी, लेखन हरी मेहरा की, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे। रात 9 बजे से छायागी सुनेगा, रात 10 बजे आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 से, और विविधा रात 11 बजे से। आपको याद दिला दें कि रात 9:30 और सुबह 9:30 से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कार्य केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोनू दादा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कॉम्पिटिशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे।
2: जी,
1: वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे?
2: मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
1: हाँ।
2: क्योंकि मैं 17 साल का था।
1: जी।
2: मगर मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव राव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो।
1: जी जी जी।
2: फॉर्म भरिए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि गुरु आप है या मैं हूं।
1: वाह।
2: उस दिन मुझे गुरु की अहमियत मालूम पड़ी और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर बोल नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है गुरु।

0: गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
0: पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसीलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने फॉर्म भर दिया गुरुजी की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए।
1: क्या बात है।
0: तो बंबई से हम दोनों ही फर्स्ट आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह है, और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी, ये कई लोगों को मालूम नहीं है
1: जी।
0: तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता था
1: जी।
0: हम लोग पहुंच गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे
1: जी जी।
0: तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की
1: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
0: बॉम्बे से।
1: मुंबई से?
0: हाँ
1: जी।
0: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक

0: पहुंच गए और माधवराव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे
1: जी जी,
0: तो माधवराव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की
1: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
0: बॉम्बे से।
1: मुंबई से?
0: हाँ
1: जी।
0: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे जो कुछ मेरे से सीनियर भी थे, फिर भी मुझे पहला नंबर मिला और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मिला। मजे की बात यह है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए।
1: क्या बात है, वाह।
0: और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बता रहा हूँ, सुनो बड़ा अच्छा बजा दे जरा मेरे पास। हाँ हाँ, वो तो सूरदास थे
1: जी, जी
0: तो हाँ बड़ा अच्छा बजाता है, कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा।
1: जी जी।
0: रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए, 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम।
1: जी जी।
0: उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाएंगे और अगर क्रोमेटिक में जाएं तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर है। और डी के बेस से डी के मिडिल तक आइए, डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो कि 4-5 इंच की डी की छोटी, जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी, वही लेके मैं पहुंच गया।
1: और स्वर सप्तक भी कुछ होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंद्र का है और डी से छोटी वाली वो मध्य है, और उसमें मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ तो फिर तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक की बांसुरियां आपके पास होनी चाहिए।
1: जी जी।
0: वो कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे,
1: किशोर दादा,
0: किशोर दादा गा रहे थे।
1: क्या बात है।
0: ना जाने जब कैसे मिल जाते हैं जैसे, ये गाना, पहले नजर में तुम मुझे भा गए, ऐसा दादा गा रहे थे कि मेरे आंखें से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने।
1: जी, जी।
0: वो बस जहां मैं बैठा हूँ आपके सामने, इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो जेम्स।
1: जी जी।
0: और मेरे पास जो बैठ के तारशाना ही बजा रहे थे वो थे दुखी बाबू, इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं, पूरा नाम है दक्षिणा मोहन टैगोर।
1: जी जी।
0: और मैं था इतना पतला दुबला कि आप कल्पेश को देख रहे हैं, ये भी मेरे सामने मोटा है।
1: जी जी जी।
0: इतना पतला, आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखेंगे तो, मेरे वेबसाइट में है तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है। तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है, और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ, बोले खाक तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है?
1: अरे
0: मैंने बोला मैं खाता हूँ, बंगाली में बोले खबर खास ना तो की चोरी रे रही अवस्था, पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं। तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए, वो सोचे कि ये खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खाया हुआ था मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो।
1: जी, जी,
0: तो मैं फिर खा लिया। वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल। बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे का शिफ्ट होता था और मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में।
1: अच्छा, बहुत बड़ी कीमत थी 10 रुपए।
0: 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। वो रविंद्र जैन के वहां भी फाइन लिया मेरे से और 140 रुपए पेमेंट था, जो काफी था, ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया, ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए। दुखी बाबू मुझे ले गए, पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है और 100-piece ऑर्केस्ट्रा और वो 40 वायलिन सिम्फनी की तरह और चेलो और डबल बेस, अपराइट बेस जिसको बोलते हैं, वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं वो डबल बेस वही लोग बजाते थे, क्योंकि वो चेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता है, खड़े खड़े जो बजाते हैं, बाद में बेस गिटार ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था।
1: जी जी।
0: और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, पंचम ऐसे ठहाका लगाते थे, देख किसको लाया हूं। तू बोलता था ना हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल, तब हरि जी भी नए थे और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास चले जाते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये बांसुरी वाला ही लाया हूं मैं पंचम दा। वो फिल्म सेंटर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के एक फोटो आज भी है, ले गए और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है, बंगला में बोले, तू नोटेशन लिखते जानिश? आमी बोल्लाम हाँ दादा मैं जानता हूँ। तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है? मैंने बोला नहीं।

0: मैं तो एक ही फिल्म में बजाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग खमाज आता है?
1: अरे
0: बोले खमाज सुना दे। और जब मैंने बनारसी अंदाज से खमाज बजाया, गले लगा लिए मुझे।
1: क्या बात है,

0: वाह, इसको कहते हैं साधक, साधना यही है
1: ये
0: उसकी।
1: है।
0: जी
1: तब मुझे उस दिन मालूम पड़ गया कि उनका फेवरेट राग खमाज है। बाद में जैसे जैसे मैं उनके साथ बजाने लगा तब मालूम पड़ा कि उनके आधे गाने तो खमाज में ही हैं। फिर उनके
0: जी
1: सिटिंग रूम मैरीलैंड, उसमें हारमोनियम में खमाज बजाया, पंचम दाने और एक गाना तैयार। ऐसे खमाज के सिद्ध पुरुष थे वो।
0: जी
1: वो पीस जो पहला पंचम दाने मुझे दिया, याद आ रही है, मेरे बांसुरी से ही गाना शुरू होता है,
0: जी

0: क्या बात है।
1: मैं कैसे बजाया मेरा मन ही जानता है, क्योंकि 24 फ्लूट मेरे पास थी नहीं, और उसको मैंने कुदरती गाने का जो सुर था, ये जो पीस है ये पंचम को सा करके ही बज सकता है अच्छा, क्योंकि उस तरीके का मेर सा से बजाऊंगा तो नहीं आएगा।
0: जी जी।
1: मेरे अंदर ना डर नहीं था, अगर मेरे सामने लता जी खड़ी है तो मैं डर जाऊंगा, ये शुरू से नहीं था। जब ये पीस बजाया तो एक दिन में इंडस्ट्री में नाम हो गया।
0: क्या बात है।
1: पंचम दा मेरे पास आए, बोले तेरा सेट कहाँ है? बोले नहीं है, सेट लिए बिना आना नहीं, पहले जाके खरीदो। तो उस जमाने में मैं उनको याद कर रहा हूं, उन बड़े लोगों को, रामचंद्र धोत्रे साहब थे, उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जैसे तू कमाएगा मुझे देना, पूरा सेट लेके जा, एक एक बांसुरी चुन चुन के चुन चुन के चुन चुन के जो सुरीला था मैंने उठाया।
0: क्या बात है, वाह।
1: और पूरा सेट जाके बॉक्स बनवाया, और पंचमदा ने RDFC लिखते थे, RD बर्मन, FC माने फिल्म सेंटर, महीने का 25 डेट मुझे मिल गया, मैं मुझे तो चांदी हो गई।
0: वाह।
1: अरे उस जमाने में महीने में 15,000 रुपए मैं कमाने लगा। तो पैसे का जो मुझे सहारा मिला फिल्म इंडस्ट्री से, पिताजी चिंतित हो गए कि अब इसका क्लासिकल कहीं छूट ना जाए, ये पैसे के पीछे लग गया है। मगर गलत साबित उनको मैंने किया, मेरी वाइफ भी जानती है, और उसके आने के बाद भी वो दौर मेरा जारी रहा
0: जी जी,
1: जो 1980 से मैं रात को रियाज करता था। तो जो लोग कहते हैं कि सुबह का राग सुबह ही रियाज करना चाहिए, ये सब मैं मानता नहीं, रियाज जब भी करो उसका फल मिलता है
0: जी।
1: रियाज में हम अपनी गलती सुधारते हैं, प्रोग्राम में फिर हम फाइन रेडी माल जाके पेश करते हैं
0: जी।
1: एक बार माँ अन्नपूर्णा देवी, हमारी पहली गुरु माँ, रविशंकर जी की फर्स्ट वाइफ,
0: गान सरस्वती,
1: हाँ गुरु माँ, माँ अन्नपूर्णा देवी से किसी ने कहा कि आप प्रैक्टिस कब करती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा देवी बोली मेरा एक टाइम है वो सुनना चाहती हूँ। तो बोले क्यों, तुम मेरा गंदगी देखना चाहते हो, शौक है तुमको, तब तो मैं अपनी सब बुराइयों को ठीक करती हूँ, तो वो क्यों सुनना चाहते हो। प्रैक्टिस इज ए लोनली एक्सपीरियंस,
0: बिल्कुल,
1: रियाज एक अकेले में करने की चीज है, जब तक आप डूबेंगे नहीं, एक लाइन मैंने लिखी है, तू अगर खुद को खो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता।
0: क्या बात है।
1: तो आपसे गुजारिश है कि आज के एपिसोड में आप याद आ रही है लोगों को सुनवा दीजिए
0: जी।

शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सुरैया की आवाज़ में प्यार की जीत फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हुस्नलाल भगतराम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कानन देवी की आवाज में हॉस्पिटल फिल्म का गाना। इसे लिखा है पंडित भूषण ने और संगीत से सवार है कमल दास गुप्ता ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में नदिया के पार फिल्म का गाना मोती हैं। गीतकार और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए मुकेश की आवाज में मेला फिल्म का गाना। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भोले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है उमा देवी की, फिल्म का नाम अनोखी अदा।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आग फिल्म से गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीतकार हैं राम गांगुली।

0: बरस की भाई उमरिया, 16 बरस की भाई उमरिया, 16 बरस की भाई उमरिया।
1: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम कौर का प्रातःकालीन नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद।

और अब आइए नज़र डालते हैं आज के दिन की हुई प्रमुख घटनाओं पर। आज ही के दिन सन 1998 में पीट सम्प्रास ने पांचवी बार विंबलडन का एकल खिताब जीता। सन 2004 में ग्रीस ने यूरो कप 2004 फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर इतिहास बनाया। सन 2007 में ईरान ने अपने विवादास्पद परमाणु मुद्दे को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। और इसके साथ ही आज ही के दिन सन 2008 में नेपाल की अंतरिम कैबिनेट ने संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया।

और अब आज जानते हैं उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है। श्रोताओं, बैडमिंटन की बात की जाए और पीवी सिंधु का नाम याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, आज पीवी सिंधु का जन्म है। आज ही के दिन सन 1995 में इनका जन्म हुआ। 1947 में भारत के नामी जीव विज्ञानी थे लालजी सिंह, जिनका आज जन्म दिवस है। 1946 में जन्म हुआ था लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक रामविलास पासवान का। 1931 में शरद पगारे का जन्म हुआ था, जो हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक है। 1901 में बीएन सरकार का जन्म हुआ, जो भारतीय प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर कलकत्ता के संस्थापक थे।

और अब आइए उनके बारे में जानते हैं जो आज ही के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज ही के दिन सन 1877 में अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवित्री का निधन हुआ। नाम था तोरु दत्त अनुग्रह नारायण सिन्हा, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ तथा आधुनिक विहार के निर्माता थे। आज ही के दिन उनका निधन सन 1957 में हुआ था। और 1920 में चित्रकला, शिल्पकला और खुदाई कला के जर्मन कलाकार थे मैक्स क्लिंजर, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो ये थी आज की प्रमुख घटनाएं, जन्मे लोग और अलविदा कहे गए लोगों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब आइए सुनते हैं नमस्ते रोहतास कार्यक्रम का पहला गीत।

आज के सामाजिक स्थानीय एवं सांस्कृतिक गतिविधि में सबसे पहले पैक्स बनेंगे किसान समृद्धि केंद्र, आय को बढ़ाने में मिलेगी मदद। जिले के किसानों के लिए सहकारिता विभाग ने नई पहल शुरू की है। बिहार सरकार की योजना के तहत जिले की रोहतास जिले की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्देश्य है कि किसानों को खाद्य बीज कीटनाशक सूक्ष्म पोषक तत्व कृषि उपकरणों की जानकारी दूसरी कृषि सेवाएं एक ही जगह मिले। किसानों को अलग अलग दुकानों कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान गाँव स्तर पर ही मिलेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रकाश ने बताया है कि सरकार पैक्स को बहुउद्देशीय कृषि सेवा केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसके जरिए किसानों को समय पर उर्वरक प्रमाणिक बीज मिलेंगे, कृषि व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि रोहतास जिले में सभी पात्र पैक्स को चरणबद्ध तरीके से योजना से जोड़ा जाएगा। हमारी अगली स्थानीय गतिविधि में ज्ञान संग्राम से छात्राएं परीक्षाओं की करेंगी तैयारी। कैमूर जिले में छात्राएं ज्ञान संग्राम के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगी। विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति रुचि बढ़ाने, तार्किक क्षमता मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक माहौल देने के उद्देश्य से राजकीय कन्या मध्य विद्यालय भभुआ 18 में इस माह के प्रथम शनिवार को ज्ञान संग्राम की पहली श्रृंखला शुरू की गई। यह नवाचार विद्यालय के अध्यापक सुमित कुमार की पहल पर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य छात्राओं को राष्ट्रीय आय सहमेघा छात्रवृत्ति परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नियमित व्यवस्थित तैयारी कराना है।

हमारी अगली स्थानीय गतिविधि में इंद्रपुरी बराज में नहाने व रील बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हाँ, सोन नहर बराज इंद्रपुरी के निचले हिस्से में बराज पर पहुंचने वाले लोगों के डैम के अंदर घुसकर स्नान करने, रील बनाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डेहरी अनुमंडल पदाधिकारी नीलेश कुमार ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने आम लोगों, आने वाले पर्यटकों के लिए आम सूचना जारी की है। स्थानीय थाना प्रशासन, जल संसाधन विभाग को भी बराज पर मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। बराज पर पानी में नहाने वाले को रोकने के लिए कहा गया है। इंद्रपुरी बराज में सोन नदी में नीचे की ओर पानी की आपूर्ति शून्य के बराबर है। बराज में लगे फाटक से रिसाव का पानी डैम के अंदर जमा हो रहा है। इसी पानी में सैकड़ों लोग स्नान कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, रील बना रहे थे। इसकी सूचना प्रशासन को मिली थी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए थे। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती का फैसला लिया।

और हमारी अगली स्थानीय गतिविधि में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने डीएम का किया स्वागत। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन रोहतास ने जिले के नए डीएम दीपक कुमार मिश्रा से शिष्टाचार मुलाकात की। अध्यक्ष सुग्रीव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में डीएम का अंगवस्त्र बुके माला देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यनारायण स्वामी भी साथ रहे। वरिष्ठ नागरिकों की ओर से डीएम को आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन की कामना दी गई। एसोसिएशन ने अपने आयोजन में डीएम से उद्घाटन का निवेदन किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फादर डे, अंतर्राष्ट्रीय मदर डे, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र जाँच शिविर, अन्य कार्यक्रम शामिल है। और हमारी अगली गतिविधि में रेड मैराथन में माही वो प्रीति अव्वल। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली के निर्देश पर रेड इन अभियान के तहत शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में जिला स्तरीय 5 किलोमीटर

पीटर रेड रन मैराथन हुई। उद्देश्य युवाओं में HIV एड्स TB और अन्य स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता बढ़ाना था। सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देना था। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कैमूर जिले के अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बालक और बालिका वर्ग में अलग अलग दौड़ हुई। मैराथन की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर की। आयोजन का संयोजक रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर वंशीधर उपाध्याय ने किया। उन्होंने कहा कि

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: और अब आइए आज की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तो श्रोताओं, लगभग सभी समाचार पत्र हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, तो आज की हमारी जो पहली सुर्खी है उसको लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपनी खास जगह दी है, जिसमें हिंदुस्तान की हेडलाइंस है, क्षमा करें, दैनिक जागरण की हेडलाइन है, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। वहीं हिंदुस्तान लिखता है, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, बिहार

में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे मुख्यमंत्री। प्रभात खबर लिखता है राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा हर माह, पटना में सहयोग शिविर सीएम। समाचार विस्तार से, नए आपराधिक कानून पर बोधगया सम्मेलन में सीएम का ऐलान, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आपराधिक मामले में शीघ्र निष्पादन के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा समयबद्ध न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। कानून का राज्य स्थापित करने के लिए किया गया निवेश आने वाले कई दशकों तक राज्य को लाभ पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में शनिवार को नए आपराधिक कानून पर 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि न्याय तभी सार्थक होगा जब आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। न्यायालय, सरकार, पुलिस पदाधिकारी सभी काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का विश्वास और बढ़ाने की जरूरत है। सीएम ने कहा है कि बिहार की पहचान न्याय के साथ विकास की रही है और नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी एवं जनहितकारी क्रियान्वयन इसी भावना को और मजबूत करेगा। हमारी अगली सुर्खी है दैनिक जागरण से, टोल वाले राज्य उच्च पद के लिए 250 रुपये दे, माह भर लगा सकेंगे असीमित फेरे। 20 किलोमीटर टोल प्लाजा के दायरे के पते पर निबंधित वाहनों को मिलेगी ये सुविधा। पथ निर्माण विभाग ने अपने अधीन राज्य उच्च पदों और पुल के लिए जिस टोल पॉलिसी को तैयार किया है उसमें कई तरह की रियायतों का जिक्र है। पथ निर्माण विभाग के टोल पॉलिसी में यह व्यवस्था दी गई है कि आप 250 रुपये दीजिए और अपने करीब के टोल प्लाजा से महीने भर असीमित फेरे लगाइए। यह व्यवस्था वैसे 4 पहिया वाहनों के लिए की गई है जो अपने संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे के पते पर निबंधित हों।

और हमारी अगली सुर्खी में को भी लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपनी जगह दी है, जिसमें हिंदुस्तान लिखता है बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से। वहीं दैनिक जागरण लिखता है विधानमंडल का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक। प्रभात खबर की सुर्खी है 20 से विधानमंडल का मानसून सत्र। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिनों का होगा। सदन के मानसून सत्र के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद ने भी अपनी सहमति दे दी थी। सत्र के पहले ही दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसे मंजूरी मिलेगी। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश होंगे। और हमारी अगली और अंतिम सुर्खी में वैभव भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बने। बिहार के समस्तीपुर जिले के 15 वर्षीय प्रतिभाशाली क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिखते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले देश का सबसे युवा खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने लगभग 37 वर्षों से कायम महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के दौर और बल्लेबाजी शैली में जमीन आसमान का अंतर है। और इसी के साथ नमस्ते रोहतास का ये अंक यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते रोहतास। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया करें कुछ पल का इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे

0: सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
0: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे।

0: हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत

0: फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं केसरी फिल्म से देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आपने ट्यून किया आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को FM 103.4 MHz पर। लीजिए, प्रस्तुत है पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी।

पसंद आपकी सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी में। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये कार्यक्रम आपके पत्र पर आधारित है, तो ढेर सारे पत्र आ चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी इंतज़ार रहता है आप सभी का, क्योंकि हमारी चाहत है कि आप सभी अपने अपने पत्रों में अपने जो गीत सुनना चाहते हैं उसे लिखें, ताकि हम आपको आपके पसंद के गीत सुनवाएं, है ना। तो हमें पत्र लिखना ना भूले। हमारा पता भी इसके लिए नोट कर लीजिए। हमारा पता है पसंद आपकी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम बिहार। हमारा पिन नंबर है 821115। पिन नंबर एक बार ध्यान से देख लीजिए, 821115। तो श्रोताओं, हमें रहता है बेसब्री से आपके पत्रों का इंतज़ार। हमारे नए नए श्रोतागण जब भी पत्र लिखते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो नियमित हैं, जिनके पत्र नियमित रूप से आते हैं, और देखिए हम उनके नाम भी नियमित रूप से शामिल करते हैं अपने पत्र में। तो आप भी अगर चाहते हैं अपने परिवार, अपने किसी खास का नाम अपने रेडियो के थ्रू सुनवाना, तो हमें पत्र लिखना ना भेजें। और देखिए, ये हमारा जो पहला पत्र है वो आया है ग्राम पोस्ट खुरमाबाद पीपल के पेड़ के पास से। तो बहुत अच्छा है ये पत्र, क्योंकि आपने लिखा है कि आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा पत्र कोई भी गाने में शामिल कर लीजिए। और हमारे जो ये श्रोतागण हैं उनका नाम है भोला प्रसाद चौरसिया, नीतीश कुमार चौरसिया, अनु कुमारी, अनीता देवी, प्रहलाद चौरसिया तथा घर के समस्त चौरसिया परिवार। और ये भी लिखा है कि हम सभी आकाशवाणी सासाराम आकाशवाणी के हर एक प्रोग्राम को सुनते हैं और हमारी तरफ से नमस्कार। तो श्रोताओं, बात हो रही है कि हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो सिर्फ ग्राम लिखकर छोड़ देते हैं, आप ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट भी ज़रूर लिखें। तो चलिए, कोई नहीं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का दूसरा पत्र। ये हमारे नियमित श्रोता है और इनके नाम है राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा। और नया नगर सुपौल से है श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। तो आइए सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

इस गीत को सुनना चाहे थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना शहबाज। और ये श्रोता है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव से है बबलू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी।

और हमारे ये श्रोता सरीमपुर बक्सर से है, राज एच डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, और जेल रोड दिल्ली से है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। और हमारा ये जो पत्र है वो नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से है, अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रूबीना परवीन, अरहान बाबू, हमजा बाबू, तैमूर बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख। और आई जिला मुजफ्फरपुर कोकिल वारा से है मोहम्मद फैसल शेख, नुजहत जहाँ नाज, और कुरकेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता है कांति निकेतन राजनगर से।

इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाट्टापारा धतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार बंद्रा, झावेंद्र कुमार वर्मा, ताजपुर मोरवा सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से है भाईकारी रायकारी, मीनाकारी, पिंगीराज आर्यन, आकर्षण पूल, आरती पूल, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और ढोली सकरा से है जयंत कुमार बोरा।

इस गीत को सुनना चाहा है जिला कैमूर वार्ड नंबर 11 नगर पालिका भभुआ से बजना चौरसिया, कृष्णा कुमार चौरसिया, मोहन कुमार चौरसिया, किरण देवी, सोनू कुमार चौरसिया, वंदना देवी एवं समस्त समस्त चौरसिया परिवार। और ये है हमारा पत्र, फुटानी चौक, नरहन स्ट्रीट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित।

और भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, बीके मिश्रा, अमित सुमित, विनय को सूर गनैया है, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से। और हमारा ये पत्र है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का।

रॉकी फिल्म के इसी गीत के साथ पत्र आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। और अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। करें कुछ पल का इंतज़ार।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
8: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
7: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
8: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
7: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
0: इधर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी।

0: योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 25 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका था। मुजफ्फरपुर साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी पाया। न्यायालय ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि

के फतेहपुर बेरी स्थित राजू सिंह के भाई के फॉर्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwadi at 90.
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
2: दिनांक 5 जुलाई राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में आज कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर विषय पर राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे। कार्यक्रम में 650 से 700 चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक, विशेषज्ञ, स्नातकोत्तर विद्यार्थी, नर्सिंग अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी भाग ले रहे हैं।
3: सहानुभूति से रोगी सुरक्षा तकरू क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रभावी व्यवसायिक संचार को सशक्त बनाने के विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में प्रभावी संवाद, रोगी सुरक्षा, टीम वर्क, विश्वास एवं रोगी केंद्रित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक उत्कृष्टता और रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBMS और सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर इंडिया के सहयोग से कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: समस्तीपुर के मटियौर गंगा तट पर निर्माणाधीन ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु का स्लैब गिरने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पटना स्थित PMCH रेफर किया गया है। पथ निर्माण विभाग ने घटनास्थल पर तकनीकी जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। भागलपुर जिले में जल संसाधन विभाग ने बांध सुरक्षा और तटबंध कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने प्रयुक्त होने वाले बोल्डर की पर्याप्त मात्रा में भंडारण और क्रेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्थल पर उपस्थित अभियंताओं को कैंप करके कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अररिया जिले के सीमावर्ती गांव के समग्र विकास के लिए VVP2 की समीक्षा की गई। समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी विनोद दोहन ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल संस्कृति और आजीविका बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 1 फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान फर्जी आई कार्ड और BMP हवलदार के दस्तावेज बरामद किए। आरोपी की पहचान जहानाबाद निवासी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न 39वीं राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप पहली रैंकिंग प्राप्त कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। रुद्र प्रताप ने लगातार

0: मैच जीतकर एक राउंड पहले ही खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के आधार पर रुद्र प्रताप को आगामी विश्व कप और एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चयनित किया गया है। रुद्र प्रताप मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं 16वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए आज राजगीर स्थित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिला हॉकी संघों को अपने क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का निर्देश दिया। चयन ट्रायल में खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया का पहचान पत्र, सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ आना अनिवार्य किया है। भागलपुर में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी बाल अंडर 15 और अंडर 17 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर 17 बालक वर्ग में इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल विद्यालय और अंडर 15 वर्ग में RHMTB उच्च विद्यालय बरारी भागलपुर की टीम ने राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता क्वालिफाई किया है। मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संचालित उत्खनन कार्य के लिए जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उत्खनन कार्य की वर्तमान स्थिति, प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बलिराजगढ़ केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नए आपराधिक कानून पर बोधगया सम्मेलन में मुख्यमंत्री का ऐलान, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक गठित होंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, E20 पेट्रोल से 2-6% तक घट सकता है गाड़ियों का माइलेज। दैनिक भास्कर ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, अगस्त से बदलेगा DL नियम, लर्निंग लाइसेंस से पहले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी। प्रभात खबर ने क्रिकेट के बढ़ते सितारे वैभव सूर्यवंशी की भारतीय टीम में डेब्यू से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बिहार का वैभव, भारत का सूर्य। आज अखबार का शीर्षक है, पटना में धारा 163 लागू, चुनाव प्रचार और हथियारों के प्रदर्शन को सख्ती, बांकीपुर चुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट। राष्ट्रीय सागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम में प्रसारित एवं अनुप्रसारित की जाने वाली कार्यक्रम विवरणी पर।

अब से थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मलिका, सुबह के 9:10 पर। 9:30 पर हम सुनवाएंगे आपको आकाशवाणी मुंबई से प्रसारित की जाने वाली कार्यक्रम विविध भारती के तहत। 10:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 10:05 पर आप सुनेंगे बाल कार्यक्रम अंकुर के तहत चर्चा वन महोत्सव सप्ताह पर।

लोक माधुरी हम आपको सुनवाएंगे सुबह के 10:30 पर, और 10:45 पर होगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रसधार। सुबह के 11 बजे विविध भारती का कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसके तहत रंग तरंग कार्यक्रम का आनंद लेंगे।

वंदन कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या के 5:10 पर, जिसमें भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। 5:30 पर विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम में हम आज आपको सर विलियम ब्रेक, रुडोल्फ वोल्फ के वैज्ञानिक से जुड़ी बातचीत सुनवाएंगे, और विज्ञान से जुड़ी नवीनतम खबरें आप सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हास्य योग दिवस 2 जुलाई पर, राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, इन सब के साथ प्लास्टिक कितना घातक विषय पर वसुधा पांडे से अर्चना की बातचीत भी सुनवाएंगे, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। संध्या 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे। 6:05 पर आकाशवाणी पटना से होगा भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे संध्या के 6:10 पर। 6:40 पर होगा भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सांझे गीत। संध्या 7 हम लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। गुड इवनिंग रोहतास, आप सुनेंगे संध्या के 7:15 से। इसके साथ प्रादेशिक समाचार, जिले की हलचल हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से संध्या के 7:25 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या के 7:50 से।

इसके साथ समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे रात्रि के 8:45 पर। रात्रि 9 बजे लोकधारा कार्यक्रम आप सुनेंगे, भोजपुरी लोकगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। इसके साथ 9:15 पर गजलों की महफिल में आप गजल सुनेंगे।

रात्रि 10 बजे रस रंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग पर आधारित गीते। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे चित्रपट तराने कार्यक्रम के साथ रात्रि के 10:30 पर। 11 बजे होगा हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और इसके साथ ही आज के सभा का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर। तो ये थे आज के कार्यक्रम विवरणी की एक झलक। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मलिका। गीत मलिका में आइए सबसे पहले सुनते हैं पल पल दिल के पास फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, जिसके गायक कलाकार है सचेत टंडन, परंपरा ठाकुर, शब्द सिद्धार्थ गरिमा के, और धुन बनाया है सचेत परंपरा ने।

0: अभी आप सुन रहे थे सब कुशल मंगल फिल्म से ये प्यारा सा गीत हर्षित सक्सेना भूमि त्रिवेदी के स्वर में, शब्द समीर अंजान के और संगीतकार थे हर्षित सक्सेना। और अब आइए सुनते हैं महत्वपूर्ण संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और हमारी सुनते कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पति पत्नी और वो से, स्वर रोचक अरिजीत सिंह नेहा कक्कर के, शब्द कुमार के और धुन रोचक कोहली के।

और अब आइए सुनते हैं गीत मलिका कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से अरिजीत सिंह निकिता गांधी के गाए इस गीत को। शब्द दिया है अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन बनाया है प्रीतम ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और इसी गीत के साथ गीतमालिका का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम को। कृपा करें कुछ पल का इंतज़ार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1900

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमिका में थी।

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की, एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: की रंगदारी पर आज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे
1: 366.3 मीटर। आइए सुनते हैं समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है बाल कार्यक्रम अंकुर।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का ढेर सारा प्यार।
0: बच्चों, आज हम वन महोत्सव सप्ताह पर करेंगे बातें। यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह प्रकृति और हम मनुष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह बहुत से जानवरों के लिए घर भी है, इसीलिए कहा जाता है कि वन ही जीवन है। जीवन भर छाया, फल, लकड़ी और बहुत सारे कीमती चीजें देने वाले वनों के पेड़ हमेशा मनुष्य के सच्चे दोस्त की तरह साथ निभाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन वृक्षों की जड़ों से वर्षा ऋतु का जल धरती के अंदर पहुंचता है। यही जल अंत में हमें ढेर सारी जल राशि प्रदान करता है। प्राचीन काल की बात करें तो हमारे देश की सभ्यता वनों की गोद से ही विकसित हुई है। ऋषि मुनि वृक्ष की छाया में ही बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें बताते थे। आज भी वनों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, फल फूलों से भरे पेड़ पौधे हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज के प्रदूषण युक्त वातावरण में इनका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हैं जो दूषित वायु को लेकर शुद्ध एवं जीवनदायक वायु हमें प्रदान करते हैं। इस तरह पेड़ हमें शुद्ध वातावरण देते हैं। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद यदि हम आज की वर्तमान स्थिति की बातें करें तो मनुष्य ने अधिक लाभ लेने के लिए वनों को काट काट कर खुद अपने लिए ही एक ऐसा पर्यावरण तैयार कर लिया है जिसका बुरा प्रभाव भी खुद उसे ही झेलना है। आज बढ़ता घटता तापमान, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने हैं। और भी अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाएं सामने आने से वनों के महत्व को अब महसूस किया जाने लगा है। देखा जाए तो यह अच्छी बात है। वनों को विनाश से बचाने एवं वृक्षारोपण योजना को वन महोत्सव का नाम देकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना एक अच्छी शुरुआत है। इससे हम अपनी धरती माँ को अधिक से अधिक हरियाली की चादर से ढक सकेंगे। बच्चों, वन महोत्सव मनाने का शुभ कार्य सन 1950 में श्री के एम मुंशी द्वारा शुरू किया गया, जो प्रत्येक साल हम वन महोत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसका यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जा सके, जिससे अधिक फलों का उत्पादन हो, और जब अधिक संख्या में पेड़ होंगे तभी जमीन का संरक्षण हो सकेगा, यानी मिट्टी का कटाव रोका जा सकेगा।
2: लेकिन दीदी, साधारण से वृक्षारोपण को महोत्सव का रूप क्यों देना पड़ा?
0: बच्चों, बढ़ती आबादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कटते जंगल, प्रकृति के प्रति उदासीनता के चलते अनेक प्राकृतिक आपदाएं, लुप्त होते पशु पक्षियों, अनजाने में हुई भूल या लापरवाही के चलते, इन सब दुष्परिणामों के सामने आते ही जब मनुष्य ने पर्यावरण हानि की सोची तो उसने यह निर्णय लिया कि वृक्षारोपण को बड़े स्तर पर शुरू किया जाए। अनेक बड़े नेताओं और कृषि मंत्री के एम मुंशी के संयुक्त प्रयासों से देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया गया। वर्षा काल में शुरू किए गए इस महोत्सव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाता है। इस समय पौधे आसानी से थोड़ी मेहनत से ही अपनी जड़ें जमा लेते हैं। बच्चों, वैसे तो हम लोग अपने जीवन में कई प्रकार के उत्सव मनाते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय उत्सवों में

0: लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, परंतु वन महोत्सव इन सबसे बढ़कर एक ऐसा उत्सव है जो हमारे जीवन को सच्चा सुख प्रदान करता है। यह महोत्सव हमें प्रकृति से जोड़ता है, यह हमें याद दिलाता है कि हे मानव, वनों के बिना तेरा कल्याण नहीं है। वन समस्त प्राणी जगत के अच्छे दोस्त हैं। वृक्षों का समूह जो कि वन कहलाता है, हमारे जीवन के आधार हैं। वृक्षों की बदौलत ही हमारी धरती हरी भरी है। वन, उपवन, बाग बगीचे पृथ्वी पर जीवन और सौंदर्य के साकार रूप हैं। इनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। नए नए वृक्षों को लगाकर वनों को घना करना वन महोत्सव का एक मुख्य अंग है। बच्चों, जब हम पेड़ पौधों के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, तो असल में हम अपने अस्तित्व के लिए ही सोचते हैं। आइए बच्चों, वन महोत्सव सप्ताह पर हम संकल्प लें कि हम वृक्षारोपण करेंगे, छायादार और फलदार वृक्षों को लगाएंगे, उनकी देखभाल कर उन्हें बड़ा करेंगे। इस तरह हमारे थोड़े से प्रयासों से थोड़ी सी भी प्रकृति संरक्षित होती है, तो सभी के प्रयासों से पूरी धरती संरक्षित हो सकेगी। बच्चों, प्रकृति हमें माँ की तरह धूप ताप, वर्षा, सर्दी गर्मी से बचाती है, अपने आंचल में शरण देती है। आइए हम सब मिलकर इनकी रक्षा करें। बच्चों, हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून आ गया है। बारिश ने तेजी से अपना रंग बिखेर कर सभी को खुशियों से भर दिया है, और बारिश के इस मौसम में समय है कि हम एक पेड़ माँ के नाम से जरूर लगाएं। है एक जीवन, एक मिशन, आओ हम सब मिलकर करें पर्यावरण संरक्षण। हरियाली की चादर फैलाएं, एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं। पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, धरती माँ को फिर से सजाएं, बंजर धरती को हरा भरा बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं। वन महोत्सव सप्ताह पर अभी हम कर रहे थे बातें। अब समय है आप सब बच्चों की कविता, गीत वगैरह। तो चलिए, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आपका नाम क्या है।
1: जी दीदी, मेरा नाम आदित्य है।
0: और आदित्य, क्या सुनाइएगा आप?
1: कविता।
0: सुनाइए कविता।
1: नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया, गिर गिर कर बादल छाया, सात समुंदर भर लाया, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाके घर में नदी धरेगा।
0: बरसात पर कविता आदित्य की बहुत अच्छी लगी। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश। कार्यक्रम के इस भाग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कहते हैं जिसे सब कोई प्यार करता है, उसे जल्दी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपना व्यवहार अच्छा रखें, सबसे मिलजुल कर रहें, जरूरत पड़ने पर मदद करें। ऐसा करके आप सभी के प्यारे बन जाएंगे। यदि आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो सभी मिलकर आपकी मदद करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था एक छोटे से बच्चे के साथ। सुनना चाहेंगे आप उस छोटे बच्चे की कहानी?
2: जी दीदी, सुनाइए ना।
0: बहुत पहले एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने गया। तभी जंगल में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ढूंढने पे उसे झाड़ियों के बीच एक छोटा बच्चा मिला। ये तो इंसान का बच्चा है, भेड़िया चौंक के बोला। वो उस बच्चे को घर ले आया, उसकी देखभाल करने लगा। जंगल का राजा शेर खान ये देख के बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उस बच्चे को वो इंसानों से चुरा कर लाया था। लेकिन भेड़िए को तो वो बच्चा झाड़ी में से मिला था। भेड़िए का परिवार उस बच्चे को पाकर बहुत खुश था। भेड़िए के परिवार में माँ ने कहा, अब हम इसे मोगली कहकर बुलाएंगे। उस दिन से मोगली अपने भेड़िए भाई बहनों के साथ घूमता, खेलता और बहुत मस्ती करता था। माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी, जैसे उसका अपना बच्चा हो। बहुत जल्दी उसकी सभी जानवरों से दोस्ती हो गई। वह उनके साथ खेलने कूदने लगा।

और जंगल का चप्पा चप्पा जान चुका था। इधर शेर खान मोगली पर दूर से नजर रखे हुए था और मौका ढूंढ रहा था कि कब उसे पकड़ सके। एक दिन भेड़िया, भालू और तेंदुआ एक साथ मिले तो लगे मोगली की बातें करने। तेंदुआ बोला, इंसान के बच्चे बड़े सयाने होते हैं, क्यों न उसे जंगल का बच्चा बनाए। भेड़िया और भालू, तुम दोनों मोगली की रक्षा करोगे और जंगल के हर तौर तरीके सिखाओगे। कई साल बीत गए। भालू बहुत ध्यान से मोगली पर नजर रख रहा था। उसने उसे फल तोड़ना और शहद निकालना सिखाया। मोगली भालू की बातें अच्छी तरह से सुनता। वह हर रोज ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर खाना खाता था। भालू ने उसे जंगल की आवाजों को पहचानना भी सिखा दिया। उसे मोगली पे नाज था। क्या दौड़ता था मोगली और क्या तैरता था। भेड़िया ने उसे सिखाया कि कैसे इंसान के पंजों को पहचाना जाए और कैसे उनसे बचा जाए। एक दिन एक छोटा भेड़िया एक फंदे में फंस गया। शेर खान उस बच्चे का शिकार करके उसे खाना चाहता था, पर उसके खाने के पहले मोगली ने उस बच्चे को बचा लिया। शेर खान को ये हार बहुत बुरी लगी। भालू ने मोगली को खतरे के वक्त लगाने वाली आवाज भी सिखाई। मोगली को यह भी याद हो गया, जंगल का कोई भी जानवर मोगली को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह जानकर कि मोगली को वो अकेला नहीं पकड़ सकेगा, शेर खान बंदर परिवार के पास गया और उन्हें मोगली के बारे में बताया। बूढ़ा बंदर बोला, मोगली को जो मालूम है अगर वो हमें बता दे तो हम जंगल के सबसे सयाने जानवर बन जाएंगे। एक दिन जब मोगली अपने लिए बरसाती बना रहा था तब बंदर लोग उसे दूर से चुपचाप देख रहे थे। वो उसे किडनैप करने का मौका ढूंढ रहे थे। शाम होते ही वो मोगली को उठाकर घने जंगल में अपने घर की ओर लेके चले गए। मोगली अब बंदर लोगों के बीच में था। अब मोगली को समझ में आ गया था कि उसे किडनैप किया गया है। वो सोच में डूब गया। उसे किसी भी तरह भेड़िया और भालू को खबर देनी थी। अचानक उसे चील दिखाई दी आसमान में उड़ती हुई। तभी मोगली को खतरे वाली आवाज याद आई। आवाज देते ही चील समझ गई कि मोगली उसका अपना ही कोई है और ये कि वह खतरे में भी है। मोगली बोला, मेरा नाम मोगली है, भेड़िया और भालू को बताना कि वो खतरे में है। बिल्कुल, क्यों नहीं, चील बोली और उसने उड़ान भरी। खबर पहुंचाने के लिए बंदर लोग मोगली को उठाकर एक गुफा में ले गए। बंदर नगर में उस जंगल में एक पुराना किला था जिसे इंसान सालों पहले छोड़ चुके थे। मोगली ने भागने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा ना हुआ। भालू और भेड़िया ने सांप से मदद मांगी। वो तीनों यानी भालू, भेड़िया और सांप में एक मूर्ति के पीछे छिप गए। उनको कई बंदर मोगली के आसपास नजर आ रहे थे। वो मोगली को बचाने का मौका ढूंढ रहे थे और मौका आते ही सांप बोला कि अभी चलो, यही सही मौका है। भेड़िया पहले गया बंदरों को डराने, फिर बंदरों से उलझने लगा। सारे बंदर डर के मारे भागने लगे। अचानक भेड़िया को बंदरों ने घेर लिया। बंदरों ने मोगली को भी एक कमरे में बंद कर दिया। मोगली को भेड़िया के लड़ने की आवाज आ रही थी। उसे याद था कि खंडहर के नीचे पानी का एक बड़ा सा कुंड है और उसे यह भी मालूम था कि बंदर पानी से डरते हैं। भेड़िया अंकल, जल्दी से पानी में कूद जाओ, मोगली ने जोर से कहा। भेड़िया भागकर पानी में कूद गया। अब भालू को बंदरों ने घेर लिया था। भालू अपने बचाव के लिए बंदरों से लड़ रहा था। वो अच्छा लड़ रहा था लेकिन बंदर ज्यादा थे और भालू अकेला पड़ गया। उधर भेड़िया पानी में बेबस पड़ा हुआ था, अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा था। भालू बंदरों से उलझा हुआ था। तभी सांप वहां आया। उसने अपनी पूंछ से बंदरों को थप्पड़ मारा। बंदर सांप से डरते थे सो सभी बंदर भाग खड़े हुए। जब बंदर वहां से दूर घने जंगल में चले गए तब भालू ने राहत की सांस ली। मौके का फायदा उठाते हुए भेड़िया पानी से बाहर निकला। तभी मोगली भी कमरे से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, इस कमरे में। सांप ने अपनी पूंछ से कमरे की दीवार गिरा दी और मोगली कूद के बाहर आ गया। भालू ने उसे गले लगा लिया। ठीक हो ना तुम, भालू ने बड़े ही प्यार से पूछा। हाँ ठीक हूँ, पर भूख लगी है बहुत।

0: चोरों की, तुम सबने अपनी चिंता न करके मेरी जान बचाई, थैंक यू उसके लिए। मोगली सांप को देख के बहुत खुश हुआ, बोला, तुम न होते तो क्या होता, थैंक यू। मोगली, भालू और भेड़िया सांप को बाय कह के घर की तरफ चले गए। अब शेर खान को यह बात समझ में आ गई थी कि जिसके रिश्ते इतने मजबूत हैं, वो उसे घायल नहीं कर सकता। वो अपने घर को लौट गया। कई साल गुजर गए। अब मोगली एक नौजवान बन गया था। एक दिन वो इंसानों के गांव के आसपास गया। उसे एक औरत दिखी जिसने उसे पहचान लिया। मोगली औरत का वही बेटा था जिसे एक बाघ ने सालों पहले छीन लिया था। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था। वो बिल्कुल उसी की तरह था। मोगली माँ और भाई का प्यार देखकर समझ गया कि यही उसकी माँ है और प्यारा भाई है। भालू, भेड़िया और जंगल के और जानवर उन्हें देख रहे थे। वे बोले, अब तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। हमारी जरूरत महसूस होगी तो बस आवाज़ लगा देना। तुम हमारे भाई हो, यह भूलना मत कभी। गुड बाय मोगली। उसने दोस्तों के साथ गले मिलकर उससे विदा ली। मोगली अपने इस परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। लेकिन उसने जंगल के उस परिवार को कभी नहीं भुलाया जिससे उसका प्यार का रिश्ता था। तो बच्चों, कैसी लगी यह कहानी आपको?
1: बहुत अच्छी।
0: अब आइए कहानी के बाद सुनते हैं एक अच्छा सा गीत।

0: आइए लेते हैं एक जानकारी, वन या पेड़ का जीवन में महत्व। बच्चों, वन या पेड़ों का जीवन में काफी महत्व है।
1: वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं। और हाँ, पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है। भाई, इन सबों के अलावा वनों से हमें अनेक कीमती सामान भी मिलते हैं, जैसे अनेक जड़ी बूटियाँ, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियों और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर और खाने पीने आदि सामान के रूप में करते हैं। हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना ही चाहिए। न सिर्फ लगाना चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। वन काटने के बजाय पेड़ लगाएं और इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अभी हम वन या पेड़ का जीवन में महत्व पर ले रहे थे एक जानकारी। समय हो गया है कि हम बता दें अपने श्रोता बच्चों को कार्यक्रम का पता। तो बच्चों, कार्यक्रम संबंधी अपने विचारों को पत्र में लिखें और भेज दें हमें इस पते पर। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाजत। जय हिंद बच्चों।
2: जय हिंद दीदी।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे। वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम अंकुर। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को। हमारे साथ यूं ही बने रहें, लौटते एक छोटे से अंतराल के बाद।

यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। पेश है भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी में आइए सबसे पहले

सुनते हैं करी हम कौन बहाना एल्बम से ये प्यारा सा गीत। इस गीत को स्वर और धुन दिया है मनोज तिवारी ने, शब्द ट्रेडिशनल के।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पिया राजा पिया जानी एल्बम से। इस गीत को स्वर और धुन दिया है भरत शर्मा व्यास ने, मोतीलाल मंजूल के लिखे इस गीत में। तो आइए सुनते हैं राजा पिया जानी एल्बम से ये गीत।

और इसी लोकगीत के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे साथ यूं ही बने रहें, लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को। प्रस्तुत है हिंदी भोजपुरी संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसधार। रसधार कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं बलम बाहरे बानी एल्बम से ये गीत, जिसे शब्द दिया है तारकेश्वर मिश्रा राही ने, धुन संजय पांडे की और गायक कलाकार है किरण पांडे।

0: पूजा तिवारी के गाए इसी गीत के साथ, ए दर्दे मोहब्बत सहे के तो होई एल्बम का ये गीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुंबई विविध भारती के कार्यक्रम को, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कृपया करें कुछ पल का इंतज़ार।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का।
0: वाह।
1: एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया।
1: जी
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी जी
0: रहे
1: जी
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही
1: और
0: बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक
0: जी
1: और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास
0: आहा
1: है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई, हाँ? दुहाई, और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया, एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता, क्रिएटर, सृजनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है असल में, फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की है।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे।

0: उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा। शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशोरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी, 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत, और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास

0: मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
1: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपने जाने कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन

0: जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो। कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ धड़ धड़ धड़ रोड क्रॉस

0: देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सेप्ट करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में,
1: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया।
0: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में,
0: जी
1: ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था,
1: जी
0: बहुत ही हिट था उन दिनों। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे,
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास से श्रोताओं, जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा। बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
0: जी,
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था।
0: जी
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आम तौर से लोग बहुत ज़्यादा सीख कर गाते हैं, उस तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है,
0: जी
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफ़ी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊँगा
0: कामयाब होंगे।
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा,
1: हाँ, घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नज़र नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं। तो मैंने फिर भी काफ़ी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो, वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले आना।
1: हाँ। बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा, और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू।

0: कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो। तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन।
1: अच्छा,
0: मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और
1: जिक्र करते
0: जाकर, हाँ, कि
1: होंगे।
0: अरे फलां एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अनु मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचम दा के यहाँ, कल्याण जी
1: जी।
0: भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
1: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया,
0: नहीं,
1: तो कैसे मिला था ये
0: इसका तो
1: मौका?
0: कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, कि मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और आगे भी रहूंगा।
1: रहेंगे।
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
1: जी।
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशिल लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है, कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कहिए या रफी साहब की चाहत थी, क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं
1: जी।
0: ना, प्रिट नेम है, बट
1: अच्छा।
0: मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत
1: बहुत
0: याद
1: याद
0: आया,
1: आया।
0: मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग,
1: जी।
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है, तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन, जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि
1: जी
0: रोज का काम है
1: जी
0: उनका,
1: जी
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व, गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया हो? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या।

0: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को,
1: जी
0: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं, मिला के अमिताभ बच्चन है।
1: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
0: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए,
1: जी
0: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया।
1: जी

0: साहब शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
1: जी
0: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया।
1: जी
0: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
1: क्या
0: पूरा
1: बात
0: हो
1: है
0: गया
1: भाई।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था।
0: मैं एक दफा गया गया था बिहार, तो वहां पे कोई एस डी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था,
1: जी
0: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
1: अच्छा,
0: तो वहां तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने
1: जी
0: किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहां मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाइए, ये सब
1: जी जी
0: बिहार का सिचुएशन देखकर
1: जी
0: पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला। देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो
1: अच्छा।
0: वहाँ गया मैं
1: हाँ
0: 76 में। मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदना एक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में बताइए।
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे, एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत

0: समय
1: जी।
0: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2-2.5 हजार है और 4 हजार के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
1: जी जी,
0: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10 हजार के ऊपर गाने हैं मेरे।
1: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
0: 17 या 18।
1: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
0: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस
1: वापस
0: आएंगे
1: आएंगे
0: विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

0: श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो

आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहां किसी के पास। तो ये है आज की इबारत, जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है, तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है। जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है। जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए, और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना, तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी कभी गम कभी धूप कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर, असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
1: डियर सर, सेवा में निवेदन।

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़ और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, ज़रूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में, बता देंगे तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वहीं लेकिन हमारी साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते, न सपने, न लोग, न जिंदगी। हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो।

0: पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं, लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं, इससे जीवन में कुछ कमी है। तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाहत जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे एक कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो, ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत। और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, क्या हमारे जीवन में हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है, या जिन चीज़ों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफ़र जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे हैं कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका पर मार्केट सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो ज़रूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे कि नेहा जी इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिल रहा है, मिला है, जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्नाडे, आशा भोसले, बतीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का

जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मानसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग 1 घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है। इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा। तो ये इनका कहना है। साथ ही कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमी नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है, जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की

में से अधूरे पन्नों को रंगने का, अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदर नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही हमारे एक और साथी ने। इतवार का क्या प्लान है, ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बताइए। और हमें जरूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी उनके फरमाइश की। एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता, तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूं। पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है, तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं, तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह, आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी को देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने एक किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि 4 हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक क्लिंटोन की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं, कहने को तो सभी ही हैं एक परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपने उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय नाश्ता खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं।

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है और आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज़्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान का पूरा जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित था। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले दिन कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहा

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों, शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिसके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन देही 2025 1 जुलाई से कामयाबी के साथ नाफिज हो गया है। वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से इस मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की इमदादी रकम जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज़्यादा की मुद्दत सर्फ हो गई थी, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे मुल्क में महज 1 दिन में नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि विकसित भारत के विज़न को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए इस जाब्ते के तहत अगले 5 वर्षों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक मरकजी वजीर आजहानी रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के महरूम और कमज़ोर तबके की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रामविलास पासवान को कौमी खिदमात के तहत उनके जज्बे को हमेशा याद किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान की पूरी ज़िंदगी गरीबों की फलाह के लिए वक्फ थी। बिहार कानून साजिया का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा। ये इजलास 24 जुलाई तक मुनक़िद किया जाएगा। मानसून सेशन के पहले दिन ऐवान में माली साल 2026-27 के ज़िमनी बजट पेश किए जाएंगे। अगले काम के दिन इस मौजू पर बहस व मुबाहसा होगा और वोटिंग के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी। इधर पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून सेशन बुलाने के

0: हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मौजू पर बामानी बहस पर तवज्जो दी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां योम तासीस आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। पटना वाक़े पार्टी सदर दफ्तर में मुनक़िद प्रोग्राम में पार्टी के रियासती सदर मंगनी लाल मंडल समेत दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने अपने पैगाम में कहा कि पार्टी का क़याम गरीबों, इस्तेहसाल ज़दा और अकलियतों के हकूक़ की लड़ाई के मकसद से किया गया था। उन्होंने पार्टी के इत्तेहाद पर जोर देते हुए कारकुनों से अवामी मफाद के मौजूआत पर लड़ाई लड़ने की अपील की है। श्री यादव ने इस मौके पर पार्टी कारकुनों के जज्बे की तारीफ की। मुजफ्फरपुर ज़िले के साहिबगंज से बीजेपी रुकन असम्बली राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हलाकत और असलहा एक्ट के मामले में 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। दिल्ली के एक अदालत ने सुनवाई करते हुए रुकन असम्बली को इस मामले में कसूरवार ठहराते हुए मुतासरा ख़ानदान को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी वाक़े राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान ज्वाय फायरिंग में एक खातून की मौत हो गई थी। मरकजी हुकूमत ने रकीक कुदरती गैस LNG की सप्लाई से इमरजेंसी पाबंदियां हटा ली हैं। ये फैसला मगरबी एशिया में जंग बंदी के बाद हरमूज वाटर डुमरू वस्त से कुदरती गैस की सप्लाई फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई के हुक्म में तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत उन खास इमरजेंसी जैसे इल्तज़ाम को हटा दिया गया है जिनके तहत हुकूमत को मुल्क में पैदा कुदरती गैस और LNG के अलाटमेंट में अव्वलियत देने की इजाज़त थी। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुने रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित

0: चार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
4: Greater economic engagement between these two large countries.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दीने दीने
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक

0: आता है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो

0: आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह।

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, हसरत जयपुरी की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार होशियार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ सूर्यकांत सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी के पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

10 नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ही बताएं। इससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्ट कार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
4: कौन सी रानी हीरावती?
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
3: अरे बकुलावलिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज की साथ पूरी करने वाली? आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
3: ओह, इन पुरुषों पर फूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है, मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था। मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना? तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का हम चलेंगे।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वल्का के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारी किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज।

0: आज मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। महाराज
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज? निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन ना रहा हो, कान में सुनिए। मैं नाग को बाल करके नाग मुद्रा लेके
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने। बस अब देर ना करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए। वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जैसे इनको सब समझा दो।
0: अभी समझा देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आज ये गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पाँव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल परी का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
5: अरे काल मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
5: मेरा तो अन्नंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
5: महाराज मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाते मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
6: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
6: देव की कैसी आज्ञा।
5: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो वो क्षमा की।
3: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
6: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
6: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमद वन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? आर्य गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी

0: काल कोठरी से मुक्त करो। ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
0: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
1: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने ये खेल कैसे खेला?
0: ये मैं फिर बताऊंगा बकला बलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
2: जो आज्ञा।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो। सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं आखा नहीं रही हूँ। क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओह सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
0: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
2: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
4: प्रिय,
5: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
4: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती हैं। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि ये तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न में भी कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
4: उत्तर क्या दें बकुला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
6: अरे बकुला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ, उसे भगाने
7: चले।
6: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
1: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
8: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
8: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
1: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
8: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
1: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही

0: देवी वो देखिए, आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन,
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंबे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर ना जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती,
1: सखी बकुलावलिका, ये कैसा है? बकुलावलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया
2: तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर पिंजरे के सामने आके रहा।
6: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उस सब के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सखी बकुलावलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
7: अच्छा तो ये सब इस बामन के करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
3: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
7: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
8: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
9: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े,

0: अग्निमी प्रमद वन उत्सव में बला रहे
1: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमी
0: प्रमद वन उत्सव में बला रहे हैं।
2: जय हो विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
3: देवी सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
2: विराजिए देव विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
3: प्रणाम भगवती
2: आपके मन की सात पूरी हो। आर्य पुत्र फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
3: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
2: हाँ महाराज जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
3: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
4: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
3: ले आओ
4: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत हैं।
5: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
3: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
5: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
3: लो देवी इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
2: मालविका आके देव देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
5: अरे राजकुमारी आप यहाँ। जय हो
6: राजकुमारी की जय हो।
2: अरे अरे मालविका राजकुमारी।
3: मालविका राजकुमारी।
5: हाँ महाराज ये हमारी राजकुमारी है।
3: कैसे?
5: सुनिए महाराज आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
2: ओह तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
3: भद्रे बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
5: मैं निवेदन करती हूँ महाराज कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
3: फिर क्या हुआ?
5: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
7: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
3: भगवती आप?
5: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
7: हाँ वही है।
5: प्रणाम भगवती।
7: कल्याण हो।
3: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
7: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
3: अच्छा अब कुछ बात समझ में आने लगी।
7: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
8: ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
3: डरिए नहीं राजकुमारी जी हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
7: भैया आप भी तो।
3: मेरे जीते जी राजकुमारी जी रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
8: अरे शेर क्या हुआ? क्या सब लोग एक साथ रुक क्यों गए?
9: जान प्यारी है वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
8: वही हुआ ना जिसका भाई था।
7: ठाकुर ने दिया है।
10: जाइए नहीं सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
8: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं सब मर रहे हैं भागे जा रहे हैं।

0: भैया लगुलुहान होकर इधर आ रहे, डाकुओं ने भैया को अकेले ही छेड़ दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े हो। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित

0: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
1: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
2: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
0: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
2: वो क्या?
0: उसने कहा था, इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही, तो मैं चुप्पी साधे रही। और
3: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
1: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ, मंत्री परिषद को हमारी यह इच्छा बता दो।
3: जो महाराज की इच्छा।
4: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है।
2: उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
3: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
1: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
2: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज, पढ़िए ना ये पत्र।
1: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
2: फिर क्या हुआ?
1: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
0: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
2: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
1: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
2: जैसे रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
3: देवी की कैसी आज्ञा।
2: मालविका, इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे, आप लज्जा क्यों रहे हैं? मालविका को ग्रहण कीजिए।
5: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लज्जा ही करते हैं।
6: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी। रेडियो नाट्य

0: रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो, तो उसमें एक

0: साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इट सेल्फ एक बड़ी बात थी। और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में। इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है वो करता है। तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना रोल
0: हाँ
1: आ रहा है।
0: जनाना रोल आया है।

0: फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी, लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था,
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है, अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी,
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा,
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट।
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी
1: बिल्कुल,
0: सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: 80s वाला दौर जो
0: हाँ
1: पूरा
0: हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला। एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुन दा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे, और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: और बहुत खूंखार रोल था वो
0: बहुत
1: उनका।
0: ही ज्यादा। काला नाग, काला नाग राइट,
1: हाँ
0: डीबीडीएन या काला नाग, ऐसा ही कुछ रोल
1: हाँ
0: था।
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है।
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था। और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। हाँ,
1: अच्छा।
0: और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक
1: अरे
0: डायलॉग। तो
1: गजब।
0: बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते
0: हाँ
1: हैं जो
0: हाँ
1: कि

0: विलेनिश रोल
1: रोल
0: होता है,
1: है।
0: खतरनाक
1: हाँ
0: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना
1: ओ, मैं वो
0: मामला.
1: फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है,
0: बिल्कुल.
1: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
0: सिर्फ सुना है.
1: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूं वो फिल्म देखने की।
0: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश,
1: ओ
0: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है,
1: करेक्ट
0: वहां से वो
1: करेक्ट।
0: पूरी यात्रा जो है वो आगे
1: हाँ
0: बढ़ती है,
1: हाँ
0: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े. लेकिन यहां अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ
1: करेक्ट,
0: आखिरी
1: आखिरी
0: रास्ता
1: रास्ता
0: फिल्म में,
1: में।
0: वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
1: बहुत ही बहुत ही। और उस
0: बहुत ही
1: समय आमित
0: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली.
1: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ
0: ऑफ
1: था,
0: कोर्स,
1: कलाकार
0: बिल्कुल.
1: के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट? सब लोगों को ऐसे जा रहे हो, आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
0: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ
1: एग्जैक्टली
0: बच्चन के सामने
1: सामने।
0: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं.
1: पूरी
0: वो
1: तरह से।
0: जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है.
1: पूरा पूरा इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
0: अपना
1: है,
0: फर्ज निभाओ.
1: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
0: बिल्कुल.
1: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
0: बिल्कुल.
1: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
0: अच्छा, स्कूल
1: तो
0: में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है.
1: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अब मैं जितनी
0: अच्छा.
1: बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लक्की हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो

0: आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी, वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी, और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वॉज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है।
1: ओके।
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो, और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास, और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, या आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं। बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया। तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्होंने देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज

0: बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ, वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओ हो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: ओके, फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी, और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल,
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन,
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया,
0: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती हैं।
1: वो यूट्यूब पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए बिकॉज सब लोग आजू बाजू अच्छा

0: सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है, ये बहुत मजाकिया थे तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: हुकूमत सड़क
0: अर्धसत्य
1: है
0: दिखाऊंगी,
1: ना
0: ये
1: बिल्कुल।
0: सारी फिल्में
1: इश्क का
0: दिखाऊंगी।
1: रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत
1: वो
0: ही
1: तो क्या लीग थी
0: अलग।
1: वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंद्र कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है। ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
1: बिल्कुल,
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये
0: ओवर
1: कुछ
0: द
1: अलग
0: टॉप नहीं
1: था।
0: थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
1: अच्छा
0: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
1: हाँ,
0: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
0: प्लीज।
1: Hey-o, hey-o, hey-o.

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकथनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निळु फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी,
0: तब और तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
0: मिला
1: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है,

0: तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स आठ आठ दस दस फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है, और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो, और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो, और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं, राइट?
1: बिल्कुल
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे।
1: जी,
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो, और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप दो प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बुनियाद है, और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा रोल है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे।
1: राइट,
0: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है, तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है, एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया, एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया, इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु
1: गुप्त
0: पुरुष
1: मिली।
0: मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी, तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था,
1: बिल्कुल
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है,
1: जी
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी, क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है, और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है, और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहां गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन विज्ञान एवं पर्यावरण। यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 5:23 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00 से। भोजपुरी समाचार बुलेटिन आपको सुनवाएंगे शाम 6:05 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर हम पेश करेंगे शाम 6:10 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी गांव के विकास में सहकारिता का महत्व, साथ ही आप लोकगीत का आनंद भी लेंगे। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत आपको सुनवाएंगे शाम 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7 बजे से। गुड इवनिंग रोहता सुनिएगा शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार हम लेकर हाजिर होंगे शाम 7:25 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद आपको सुनवाएंगे शाम 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा सुनिएगा रात्रि 9 बजे से। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर। एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसरंग लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10 बजे से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर।

अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। वंदन कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भक्ति संगीत।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: वंदन कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। लीजिए सुनिए विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण।
1: विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। रिमझिम बारिश की फुहारें वातावरण को शीतल कर रही हैं और आसमान में बादलों का डेरा है। आसमान से गिर रही वर्षा की बूंदें पौधों के लिए संजीवनी का काम करती है। रोहिणी नक्षत्र में किसानों द्वारा गिराए गए धान के बीज धरती को हरा भरा कर रहे हैं। पेड़ों पर भी गजब की निखार है। पेड़ों की डालियां हिलोरे लेकर अपने सजीव और स्वस्थ होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे धान की रोपनी होगी और प्राकृतिक सुषमा में निखार आते जाएगा, लेकिन अधिक बारिश की स्थिति में भीगने से बचना भी चाहिए और आसपास में गंदगी नहीं रुकने दिया जाना चाहिए। जल जमाव और पशुओं के मल मूत्र से इस मौसम में रोगों के कीटाणु पनपते हैं, मच्छरों की भी वृद्धि होती है। अतः स्वयं के साथ साथ पालतू पशुओं को भी मच्छरों के दंश से बचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बरसात जनित बीमारियों की स्थिति में नज़दीक के चिकित्सक से परामर्श कर उचित इलाज कराना चाहिए। श्रोताओं, बरसात आते ही हर घर में छाते की खोज शुरू होती है और नए छाते भी खरीदे जाते हैं। आजकल तो रंग बिरंगे छाते बाजार में मिलते हैं जो देखने में आकर्षक भी लगते हैं और खूबसूरत भी। वस्तुतः छाते का प्रयोग लगभग 4000 वर्ष साल पहले प्राचीन मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया में धूप से बचने के लिए चलन में आया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में चीन में इसे पहली बार मोम और तेल लगाकर जलरोधी बनाया गया, जिससे यह बारिश से बचने का साधन बना। प्राचीन काल में ताड़ के पत्तों से बने छाते काम में लाए गए, लेकिन 1710 में यूरोप में हल्के वजन के फोल्डिंग छाते लोकप्रिय हुए और 1892 में सैमुअल फॉक्स ने स्टील की रिब्स वाले हल्के छाते का आविष्कार किया तथा साथ ही 1928 में हैंस हैप ने आज के समय में उपयोग होने वाले टेलीस्कोपिक या पॉकेट छाते का आविष्कार किया। वैसे छाते की अंग्रेजी अम्ब्रेला है और यह लैटिन वर्ड अम्ब्रा से बना है, जिसका अर्थ होता है छाया या परछाई। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस, राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। लेकिन शुरुआत इस अंक के वैज्ञानिकों की चर्चा से। इस अंक के वैज्ञानिक हैं सर विलियम ब्रेग और रूडॉल्फ वोल्ट। 2 जुलाई 1862 को जन्मे सर विलियम ब्रेग और उनके बेटे सर विलियम लॉरेंस ब्रेग प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी और क्रिस्टलोग्राफर थे, जिन्होंने एक्सरे के माध्यम से क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का विश्लेषण करने की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1915 में संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सर विलियम ब्रेग ने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया। बेटे लॉरेंस ब्रेग ने महज 25 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतकर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक होने का रिकॉर्ड बनाया। पिता पुत्र का यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने एक

साथ साझा रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हो। 12 मार्च 1942 को सर विलियम हेनरी ब्रेक का निधन हो गया। अब इस अंक के दूसरे वैज्ञानिक रूडोल्फ वोल्फ की बात कर लेते हैं। 7 जुलाई 1816 को स्विट्जरलैंड में जन्मे जोहान रूडोल्फ वोल्फ प्रमुख स्विस खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्हें मुख्य रूप से सूर्य के धब्बों यानी सन स्पॉट्स पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए जाना जाता है। वोल्फ ने सूर्य के धब्बों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध स्थापित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने गणना की कि सौर चक्र लगभग 11.1 वर्षों का होता है। इनके द्वारा आविष्कृत वोल्फ संख्या का हमारे खगोलविद आज भी प्रयोग किया करते हैं। 6 दिसंबर 1893 को रूडोल्फ वोल्फ ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो श्रोताओं, यह थी इस अंक के वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा। और अब एक नज़र DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की उपलब्धियों से संबंधित खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं। श्रोताओं, खबर है कि DRDO ने उड़ीसा तट से स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM को सफल उड़ान परीक्षण किया है, तथा साथ ही इन परीक्षणों में रुद्रम 2 मिसाइल भी शामिल है। बताया गया है कि DRDO ने दुश्मन के रडार और संरचना संपत्तियों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई रुद्रम 2 का भी सफल परीक्षण किया है। अलावा इसके DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई हैं। यह सिस्टम आसमान में सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों पर नज़र रख सकेगा। तो श्रोताओं, यह थी संघ से संबंधित नवीनतम खबरें। और अब बातें 1 जुलाई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जोक दिवस या हास्य दिवस की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों के जीवन में हंसी और सकारात्मकता लाना तथा तनाव दूर किया जाना। एक शोध के मुताबिक मात्र कुछ ही मिनट की हंसी आपके तनाव को कम करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला यह दिन लोगों को खुशियां बांटने और हास्य के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आधिकारिक दिवस नहीं है, बल्कि समाज के बेहतर निर्माण के लिए समय के साथ लोकप्रिय हुआ एक जागरूकता और उत्सव दिवस है। अतः इस दिवस को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सभी की भावनाओं का आदर करते हुए ऐसा हास्य चुनना चाहिए जो सभी के लिए आनंददायक हो। श्रोताओं, अब बातें 3 जुलाई को संपन्न राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस की कर लेते हैं। इस वैश्विक पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के अत्यधिक इस्तेमाल से नुकसान के प्रति जागरूक करना और इसके टिकाऊ विकल्पों को अपनाया जाना है। जो पॉलीथीन हम और आप सब्जियों या फल खरीदकर अपने घर ले आते हैं, उसे नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, जिससे यह पर्यावरण और समुद्री जीवों को भारी नुकसान पहुंचाता है। यह बैग आग में जलने पर विषाक्त गैसों को उत्सर्जित करता है, जिसे श्वसन एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियां फैलती हैं, और मिट्टी में डाल देने से यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। वर्ष 2026 में आप प्लास्टिक फ्री जुलाई जैसे अभियानों में शामिल होकर दैनिक जीवन में प्लास्टिक को हटाने की पहल का हिस्सा बन सकते हैं। बेहतर होगा कि आप जब भी बाजार जाएं तो कपड़े के बने झोले लेकर जाएं, या फिर कागज के बने ठोंगे या थैले का ही इस्तेमाल करें जो बायोडिग्रेडेबल

0: होता है, यानी मिट्टी पानी में आसानी से जल जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को दुष्प्रभावित भी नहीं करता। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं बहन वसुधा पांडे जी इस संबंध में।
1: प्लास्टिक जाने अनजाने हमने अपने ही हाथों एक ऐसा आविष्कार कर दिया है जो हो सकता है हमें ही विलुप्त कर दे। आज जो प्लास्टिक हम कुछ 10-15 मिनट के लिए सब्जियां लाने में प्रयोग करते हैं, यह हमारी 18 पीढ़ियों तक नष्ट नहीं होगी। इसका प्रयोग बच्चों के खिलौनों में किया जाता है। लेड, डाइऑक्सिन, मरकरी जैसे केमिकल्स इसमें से निकलते हैं। इसके केमिकल्स के कारण यह प्लास्टिक ना के बराबर रिसाइकल होता है। जिस प्लास्टिक का प्रयोग हम लगभग हर दिन करते हैं वो है पॉलीइथाइलिन, जिसे पॉलीथिन या पॉलीबैग कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर सामान लाने के लिए करते हैं। इस प्लास्टिक का हम बेहद आराम से रिप्लेस कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसे रिसाइकल करना बहुत कठिन है। कई तरह की प्लास्टिक इतनी खतरनाक होती हैं कि वो कई देशों में बैन कर दी गई हैं, जैसे पॉलीकार्बोनेट। पीसी का प्रयोग कई वर्षों तक शिशु की दूध की बोतल बनाने में किया जाता था। हम हर तरफ प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। रसोई में रखे डब्बे, पानी की बोतलें, पॉलीथिन में रखी सब्जियां, पैक्ड फूड, कुर्सियां, घड़ी, टीवी, कंप्यूटर, बाल्टियां, गाड़ियां, खिलौने, बच्चों के लंच बॉक्स, मोबाइल के अधिकतर भाग, सजावट की वस्तुएं इत्यादि। एक तरफ जहां प्लास्टिक ने हमारी ज़िंदगी आसान की है, वहीं दूसरी ओर इस पर पूर्ण निर्भरता ने हमें गहरे संकट में डाल दिया है। रंग बिरंगे प्लास्टिक हमें आकर्षित तो ज़रूर करते हैं, परंतु हमारी ज़िंदगी और प्रकृति को बेरंग भी कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, साइंस इज़ अ बैड मास्टर बट अ गुड सर्वेंट। जितना हो सके प्लास्टिक कम प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी बातों या सोशल मीडिया के माध्यम से सचेत करना चाहिए। कुछ छोटे मोटे प्रयास हम आज से शुरू कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ का प्रयोग ना करें, पौधे मिट्टी के गमलों में लगाएं, स्टील, तांबा या मिट्टी के बर्तन से पानी पिएं, बाजार जाएं तो जूट या कपड़े का थैला लेकर जाएं, पार्टियों में गुब्बारों की जगह दीपक, मोमबत्ती या फूलों से सजावट करें। अगर हमारे घर के आसपास हरे और नीले रंग के कूड़ेदान हैं तो सूखा कूड़ा नीले में और गीला कूड़ा जैसे चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके आदि हरे में ही डालें। इससे रिसाइकल करने में आसानी होती है। अर्थव्यवस्था का एक सरल नियम है कि मांग और उत्पादन साथ साथ चलते हैं। मांग जितनी कम होगी, उत्पादन उतना ही कम होगा। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि समूचे ब्रह्मांड में बस पृथ्वी ने हमें शरण दी है। यह हमारा ही नहीं, हमारे बाद आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों का भी घर होगा। अब यह हम पर है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसी विरासत छोड़ जाते हैं।
0: श्रोताओं, 1 जुलाई को एक और खास दिवस मनाया गया जिसे हम जीएसटी दिवस कहते हैं। यह दिन 2017 में लागू हुए ऐतिहासिक कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की याद दिलाता है, जिसने एक राष्ट्र एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को साकार किया। इस दिवस का उद्देश्य है कर अनुपालन को आसान बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। याद हो कि जीएसटी प्रणाली द्वारा वैट, एक्साइज ड्यूटी और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके देश भर में एकीकृत व्यवस्था लाई गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए जीएसटी में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। श्रोताओं, अब चलते चलते राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में समर्पित है। 1991 से मनाए जा रहे इस दिवस को हम उन्हें याद करते हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करने वाले, चिकित्सा के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा देने वाले और रोगियों को स्वास्थ्य लाभ देने वाले सभी डॉक्टरों के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करने के

0: ये मनाते हैं। कहते हैं भगवान के बाद चिकित्सक ही हैं जो हमारे बिगड़े हुए स्वास्थ्य को पुनः पटरी पर लाते हैं और हमारी तबीयत पुनः ठीक हो जाती है। अतः ऐसी शख्सियतों का हमें आभार संदेश भेजकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे पूरे मनोयोग से रोगियों का इलाज कर सकें। आइए सुन लेते हैं डॉक्टर एसएन मिश्रा से की गई हमारी बातचीत के संपादित अंश।
1: डॉक्टर एसएन मिश्रा जी, आप जिले के प्रख्यात चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के आयोजन के महत्व को किस प्रकार रेखांकित किया जाए?
2: इसके बारे में कहें तो डॉक्टर्स डे के मनाया जाता है।
1: जी,
2: ये डॉक्टर्स डे एक हमारे इमिनेंट इंजीनियर्स फिजिशियन थे डॉक्टर बीसी राय, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं।
1: जी जी जी
2: तो ये ग्रेटिट्यूड हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मेडिकल स्टाफ ऑल ओवर द कंट्री, जो जो सर्विस का डेडिकेटेड सर्विस है उसके लिए। और उस डॉक्टर्स उन्होंने शुरू किया था इस डेट को 1 जुलाई से, डॉक्टर विधान चंद्र राय जो कि एक वेस्ट बंगाल के एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर, एकेडमिशियन, पॉलिटिशियन, काफी इनका एक बहुत जीनियस और प्रतिभावान डॉक्टर थे जिनकी प्रतिभा डाइवर्सिफाइड थी और हम लोगों के रिस्पेक्टेबल रहे हैं। अब डॉक्टर्स डे का महत्व क्या है, ये थीम जो है हम लोगों का,
1: जी
2: ये वी आर ए फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन।
1: जी जी जी
2: हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए।
1: जी
2: वो हम आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोविड पीरियड में या जो भी पैंडेमिक हो, इपिडेमिक हो, उसमें डॉक्टर्स अपने लाइफ की परवाह न करके पूरी तरह से डिवोटेड रहे हैं।
1: जी
2: तो इसी के लिए हम ये जो है हम लोग मनाते हैं।
1: डॉक्टर एसएन मिश्रा जी,
2: जी
1: डॉक्टर कैसे बना जाए यह एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कैसे हो यानी उनका व्यवहार कैसा हो, इस संबंध में हम आपका विचार लेना चाहेंगे।
2: डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सेवा के लिए ही बना हुआ है, सेवा भाव से ही करना है।
1: जी
2: दुनिया में बहुत तरह के प्रोफेशन है और मेरा अपना मानना है कि इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। इसे कोई इसे किसी न किसी की सेवा ही होती है,
1: जी
2: वो जैसे भी सेवा, जिस फॉर्म में भी सेवा हो, सेवा ही होती है।
1: जी
2: हाँ, तो इस वजह से इसका महत्व जो है, हम लोग आपने देखा होगा कि कोविड काल में जो फिजिशियंस का वर्क राउंड द क्लॉक 24 आवर्स लगातार हम लोग अपने, इसके वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स की मृत्यु भी हुई, इसमें बहुत सारे कैजुअलिटीज भी हुई डॉक्टर्स की, लेकिन अपना वो काम छोड़े नहीं, लगातार वो लगे रहे। और डॉक्टर्स किसकी कोई पार्टी, पॉलिटिक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन को नहीं देखता है, हर किसी की सेवा, अनकंडीशनल सेवा देता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कुछ महीने पहले एंटीबायोटिक बे असर होते देखा गया था, मतलब एक खबर थी। यदि सचमुच में दवाइयां बेअसर होती रहे तो आरोग्य के कौन कौन से अन्य उपाय हो सकते हैं?
2: मॉडर्न मेडिसिन की जो परंपरा है और सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है, अलग दूसरे सिद्धांतों से। एक जो है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स, इस तरह की चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग से, एंटीबायोटिक्स हम लोग लिखते हैं, हम लोगों के प्रिस्क्रिप्शन को कॉपी कर करके जो क्वैक्स हैं पेरीफेरी में जो लोग काम करते हैं, कुछ जो सेमी लिटरेट कम्युनिटीज हैं, वो लोग मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग करते हैं। उसकी वजह से एक विशेष समस्या पैदा हो गई है जिसको सुपर बग, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि सामान्य एंटीबायोटिक्स पर से रेजिस्टेंट हो जाता है, काम नहीं करता, वो हमारे पूरे

0: समुदाय के लिए, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल थ्रेट है। अगर हम इस तरह से दुरुपयोग करेंगे एंटीबायोटिक्स का, तो सुपर
1: जी
0: बग जो होगा वो अगर फैल गया तो कोई एंटीबायोटिक्स फिर काम नहीं करेगा और पूरी मानवता है खतरे में पड़ जाएगी।
1: जी चिकित्सक समाज में आम जन के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। अतः चिकित्सक एवं नागरिकों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। डॉक्टर साहब, कोई चिकित्सक एक आम नागरिक से कैसे व्यवहार की उम्मीद करता है ताकि उसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं।
0: डॉक्टर्स की समस्या है कि डॉक्टर्स मार खाते हैं, मार भी खाते हैं, लेकिन फिर भी अपना ड्यूटी नहीं छोड़ते, अपने सेवा कार्य नहीं कर छोड़ते हैं। तो ये जो है, ये हम लोगों का त्रासदी है कि हम लोग चिकित्सा के दौरान, आपने प्राय सुना होगा कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो गई, डॉक्टर्स
1: जी
0: तो एक जो है इस समाज में समस्याएं हैं आ रही हैं, जो कि हम लोगों को फेस करना है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। हम बार बार हम लोगों को एश्योरेंस मिला है कि
1: जी
0: इस तरह की नहीं आएगी समस्या, लेकिन फिर भी जब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ये समस्याएं आती ही रहती हैं।
1: जी श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से डॉक्टर एस एन मिश्रा से अर्चना की बातचीत। डॉक्टर साहब, अब अंत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
0: श्रोताओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी लेवल पर अगर हम लोग अपने रोग को न आने दें, जैसे कोविड के समय हम लोग मास्क पहनते रहें, सैनिटाइजर यूज करते रहें, हैंड वॉश का प्रयोग करते प्रैक्टिस किए करते रहे हैं, लोगों को बताते भी रहे हैं, वो प्राइमरी केयर है। अगर प्राइमरी केयर ठीक ढंग से हम लोग अपना लें, जैसे कि किसी समान जो हेल्दी लिविंग स्टाइल को हम लोग अपना लें, तो बहुत सारे रोग जो हैं स्वतः कम हो जाएंगे। जब प्राइमरी लेवल पर काम नहीं होता है तब सेकेंडरी लेवल पर दवा से और मेडिसिन से ठीक करते हैं, और टर्शरी लेवल तो है कि दवा पर ही जो है वो एक नेक्स्ट स्टेज होता है, जो कि जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हो गई, किसी को किडनी फेल्योर होगा, तो टर्शरी स्टेज में चला जाता है। वो तो आपको टोटली डिपेंड होना पड़ता है, होल लाइफ दवा पर रहना पड़ता है, मेडिकल केयर में रहना पड़ता है। तो बेहतर अगर प्राइमरी केयर पर, प्राइमरी केयर में हम लोग अपनी कुछ अपने आप को शिक्षित कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि टर्शरी स्टेज में आने की जरूरत पड़ेगी किसी को।
1: जी डॉक्टर एस एन मिश्रा जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, बचपन के लम्हों को भूल पाना कितना कठिन होता है। भोलेपन, मासूमियत, निष्कपट और निश्चल बचपन ईश्वर का रूप होता है। बच्चों को उन्हें उनके बचपन को और भी आह्लादपूर्ण बनने में सहयोग करें और उन्हें तन और मन से पूर्ण विकसित होने दें।

श्रोताओं, आज का हमारा यह अंक कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। तो अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: पेश है भोजपुरी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोक गीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुनने के लिए चलते आकाशवाणी के पटना केंद्र।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहले बने कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गई बा। मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मिशन के अंतर्गत राज्यन खातिर 25,000 करोड़ रुपया के सहायता राशि जारी कैलन। उ कहलन कि मनरेगा के लागू होखे में 3 साल से बेसी

समय लगल रहे, जबकि विकसित भारत जी राम जी के पूरा देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिहल गेल बा। श्री चौहान कहलन कि विकसित भारत के विजन के तेजी से आगे बढ़ावे खातिर ए अधिनियम के तहत अगला 5 साल में 2,86,000 पंचायतन में 7.5 लाख करोड़ रुपया से बेसी के निवेश कल जाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जयंती पर उनकरा के श्रद्धांजलि अर्पित कैलन। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी कहलन कि रामविलास पासवान समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिले रहलन। प्रधानमंत्री कहलन कि रामविलास पासवान के जनसेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति उनकरा समर्पण खातिर हमेशा याद कैल जाय। गृह मंत्री अमित शाह कहलन कि रामविलास पासवान के पूरा जीवन गरीब के कल्याण खातिर समर्पित रहे। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहले बड़न कि स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्ग के हिमायती रहलन और सब वर्ग के विकास खातिर प्रतिबद्ध रहलन। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुई। इस सत्र 24 जुलाई तक आयोजित कैल जाय। मानसून सत्र के पहला दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश कैल जाय। अगला कार्य दिवस में यह पर सामान्य वाद विवाद होई और मतदान के बाद एकरा मंजूरी देहल जाय। यह बीच संसद के मानसून सत्र भी 20 जुलाई से शुरू होई और 13 अगस्त तक चली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहलन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र बुलावे के सरकार के प्रस्ताव के मंजूरी दे देले बाड़ी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री रिजिजू कहलन कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दा सब पर सार्थक बहस चर्चा और निर्णय लेवे पर ध्यान दिहल जाय। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिला के दोइया में शांति मनी पेपर मिल के बढ़ावे वाला परियोजना के शुभारंभ कैलन। ए दौरान उ मिल परिसर के घूम के उत्पादन प्रक्रिया और अत्याधुनिक मशीन सब के निरीक्षण भी कैलन। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर अपन उम्मीदवार घोषित कैले बिया। पार्टी के कोर कमेटी के बैठक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती श्री किशोर के नाम के घोषणा कैलन। पार्टी उम्मीदवार घोषित भैला के बाद प्रशांत किशोर पत्रकारों से बातचीत में कहलन कि पार्टी जे जिम्मेदारी तय कैले बिया ओकर हम सम्मान करतनी। बांकीपुर उपचुनाव खातिर बिहान अधिसूचना जारी हुई। मतदान 30 जुलाई के हुई जबकि मतगणना 3 अगस्त के कैल जाय। मालूम रहे कि यह सीट पर उपचुनाव भाजपा विधायक नितिन नवीन के इस्तीफा के वजह से हो रहा बा। प्रदेश में मानसून के सक्रियता से आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कईन गो जिला में हल्का से मध्यम बरखा बरसल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान पश्चिमी चंपारण के बगहा में सबसे बेसी 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कैल गई। मौसम के अनुसार अनुमान में कहल गई बा कि बिहार राज्य के औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिला में एक दो जगह भारी बरखा होखे के संभावना बा। इन्हें बरखा होखला से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के कमी आयल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर के भभुआ प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। राष्ट्रीय जनता दल के 30वां स्थापना दिवस आज पूरा प्रदेश में मनावल जा रहा बा। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत और वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित रहलन। ए अवसर पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपन संदेश में कहलन कि पार्टी के स्थापना गरीब, शोषित और अकलियत सबके अधिकार के लड़ाई के उद्देश्य से कैल गई रहे। वो पार्टी के एकजुटता पर जोर देवे वाला कार्यकर्ता लोगन से जनहित के मुद्दा पर संघर्ष करे के अपील कैलन। श्री यादव यह अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता लोगन से के संघर्ष और समर्पण के सराहना कैलन। एकरे साथ है आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता भाई बहनों के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार। देखी श्रोता भाई, हम चाहते नहीं कि पहले आज के जौन कार्यक्रम बा एकरा पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लिया जा। तो सबसे पहले नू हमने के एगो चर्चा के लिए कि गांव के विकास में सहकारिता के कितना महत्व बा, कारण कि अभी 29 जून से लेके 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनावल जा रहा बा। एकरा बाद हमने के अपना मन मन साइन खातिर खूब निमन एगो लोकगीत सुनल जाए, जेकर कलाकार बानी श्रीमती सुधा सिन्हा। फिर हमने के चलल जी स्वयं सहायता समूह बनावे खातिर का कल जला, एकरा से हमने के का लाभ बा एकरा बारे में जानकारी देव इंदु कुमारी। फिर हमने के एक जानकारी के तहत सुनल जी बरसात में हमने के खान पान कैसे रखे के चाहिए, खान पान पर कितना ध्यान देवे के चाहिए, कारण कि हर मौसम के अलग अलग मियाज होला। तो अभी जौन बा ना हमने के बरसात के मौसम में ज़्यादा वायरस फैले के संभावना रहला, तो ओह में हमने के कोशिश करे के चाहिए कि ताज़ा ही भोजन कर जाओ। तो देखी श्रोता भाई, हमने के जौन देश हनु ई कृषि प्रधान देश मानल जला, कारण कि पूरा आबादी के लगभग 70% लोग गांव में रहलन। यह ग्रामीण आबादी के विकास पर ही देश के विकास निर्भर करेला, कारण कि जहां बहुमत रहला उकर विकास यदि होता तो समझी कि वो देश के विकास मानल जाला। तो हमने के विकास खातिर गांव में बहुत सा योजना सरकार द्वारा चलावल जा रहल बा। एकरा साथे साथे हमने के एक घड़ी जौन सहकारिता सप्ताह मनावल जा रहल बा, एह में भी एकर भी बहुत बड़ महत्व हमने के गांव के विकास में होला। देखी श्रोता भाई, सहकारिता से किसान भाई खातिर जौन सस्ता दर पर लोन मिल जाला, जानवा से कि साहूकार के जौन मनमानी होला वो अधिक पैसा लेकर के किसान भाई लोग के जौन पैसा देलन खेती करे खातिर, ओकरा से भी बचत होला। एकरा साथे साथे सहकारिता से कृषि उत्पज खातिर भी बहुत निमन फायदा होला। एकरा साथे साथे गांव में रोजगार के भी अवसर मिलेला। तो देखी गांव के विकास खातिर सहकारिता के योगदान दौन जौन बा एकरा में सस्ता कर्ज आ वित्तीय समावेश होला। हमने के ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाई खातिर प्राथमिक कृषि ऋण लेवे के सुविधा एकरा से मिल जाला, जौना में कि खेती के कार्य करे खातिर आसानी से ऋण मिल जाला, जौन कि किसान भाई जौन बन इनका सुविधा होला। एकरा साथे साथे बिचौलिया से भी मुक्ति मिल जाला। सरकारी विपणन समिति जौन बा या किसान भाई के उपज सीधा बाजार तक पहुँचावे में जौन बा ये मदद मिलेला एकरा से। किसान भाई के आपन फसल के पूरा लाभ भी मिलेला सहकारी जौन समिति बा एकरा से जुड़े से। एकरा साथे साथे सामुदायिक आ सामाजिक विकास भी हमने के किसान भाई के होला। सहकारी समिति जौन बा तौन ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य आ महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मतलब कल्याण कार्य के भी बढ़ावा देवेला। यह प्रकार से सहकारिता के जौन बा योगदान बहुत हमने के ग्रामीण विकास में बहुते अधिक बा। तो आई अब हमने के कुछ मनोरंजन कर जाओ, आ मनोरंजन खातिर एगो खूब निमन बरसाती लोकगीत सुनतन जा। यह लोकगीत के कलाकार बानी श्रीमती सुधा सिन्हा, आई हमने के लोकगीत सुनल जाओ।

देखी श्रोता भाई कितना निमन लोकगीत लागल आ इतना निमन लोकगीत सुनावला खातिर श्रीमती सुधा सिन्हा के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी श्रोता भाई पहले हमनी के गांव घर में बड़ा परिवार रहत रहे, मतलब वह परिवार में माता पिता के अलावा चाचा चाची दादा दादी मतलब एक वो बड़ा परिवार रहत रहे, जाना में कि आदमी के हर तरह के सुरक्षा आ सुविधा मिल जात रहे, हर कोई के यदि कोई तरह के जरूरत बा तो ओकर जरूरत के पूर्ति

0: परिवार से ही हो जात रहे, लेकिन आज के समय ऐसा हो गया बा कि हर केहू सेल्फिश हो गया बा, हर कोई खाली अपने बारे में सोचा था। तो इसमें आदमी के कोई भी जरूरत के जब जरूरी जरूरत पड़ता तो उस समय कहीं ना कहीं ओकरा कोनो संगठन के सहयोग लेवे के पड़ता या कोनो समूह के ओकरा जरूरत पड़ता। ऐसे संगठन में बहुत बड़ा ताकत होला, या संगठन के हिसाब से देखल जाओ तो परिवार के संगठन भइल, गांव के संगठन भइल, या समाज के जौन संगठन बा जौन सामाजिक विकास करेला, वैसे ही बहुत सा हमनी के गांव घर में अभी ऐसा भी संगठन चल रहा बा जौना में कि स्वयं 10 आदमी मिल के 20 आदमी मिल के आपन जरूरत के पूर्ति करते हैं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह देखल जाओ तो हमनी के गांव घर में ऐसा एगो संगठन बा जौन कि 10 आदमी 20 आदमी या महिला लोग मिल करके एकरा के चलावेला, आ वो संगठन से जेकरा जैसा आर्थिक जरूरत बा तो ओकर पूर्ति हो जाला। तो इस बारे में हमनी के और विशेष जाने खातिर आई हमनी के एगो वार्ता सुनतन जा कि जौन स्वयं सहायता समूह बा एकरा के कैसे बनावल जाला आ एकरा से का लाभ बा हमनी के, एकर वार्ताकार बानी इंदु कुमार कुमारी, ताई हमनी के सुनल जा।
1: चाहे हम लाख महिलाओं के लिए शैक्षणिक सामाजिक एवं राजनैतिक उत्थान की बात करें, मगर आर्थिक रूप से यदि महिलाएं कमजोर हैं तो हमारा बहुमुखी विकास असंभव है। लेकिन महिलाओं को सशक्त करने में उनकी सहायता कौन करे? हम सब हमेशा से ही सुनते आए हैं कि स्वयं सहायता ही सर्वोत्तम सहायता है, संगठन में ही शक्ति है। जाल में फंसे हुए पंछियों की कहानी भी हमने सुनी है, वे अलग अलग नहीं उड़ सके, परंतु जब सब ने एक साथ ताकत लगाई तो उड़ने में सफल हो गए। हम सभी जानते हैं कि एक लकड़ी आसानी से टूट सकती है, परंतु लकड़ियों के समूह को तोड़ने में कठिनाई होगी। व्यक्ति की इसी सोच ने स्वयं सहायता समूह को जन्म दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीब व्यक्तियों का समरूप समूह है, जो हमें बताते हैं कि संगठन में कितनी शक्ति है। साथ ही हमें यह भी दिखाते हैं कि स्वयं सहायता समूह ही कैसे सर्वोत्तम सहायता हो सकती है। आज भी ग्रामीण गरीब भूमिहीन परिवार की महिलाएं, जिनकी आमदनी का मुख्य स्रोत मजदूरी ही है, ये महिलाएं कल के लिए कुछ नहीं सोच पाती। इन्हें किसी भी असामान्य परिस्थिति में, जैसे किसी के बीमार पड़ने पर, शादी ब्याह में, घर छवाने इत्यादि आकस्मिक जरूरतों के लिए महाजनों पर आश्रित रहना पड़ता है, जहाँ ब्याज दरें बहुत अधिक हुआ करती हैं। उनकी ज़रूरतें छोटी राशि की हुआ करती हैं, परंतु बार बार हुआ करती हैं। बैंक अब तक इन संसाधनहीन लोगों से निपटने में कठिनाई एवं जोखिम के कारण संकोच करते हैं। ऐसे में बहुत ही गरीब महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, जो अपनी आय में से सबकी सहमति से छोटी छोटी रकम बचत के रूप में इकट्ठा करती हैं, जिससे समूह की सामान्य निधि निर्मित होती है। इस सामूहिक निधि से समूह के सदस्य को जरूरत के अनुसार छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं। वे एकजुट होकर अपनी समस्याओं को सुलझाती हैं तथा सामाजिक आर्थिक अन्याय का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति से सक्षम हो जाती हैं, जिससे वे कई सदियों से ग्रस्त रही हैं। कहते हैं बचत विकास का पहला कदम है, और इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में बचत करने की क्षमता विकसित होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं? स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए पहला कदम हम में से ही किसी एक महिला को उठाना पड़ेगा। तरीका काफ़ी आसान है। हमें गांव में बसे गरीब परिवारों से मिलना होगा, लोगों से अच्छी तरह से परिचित होना होगा, उनके विश्वास को हासिल करना होगा, उनको अपनी योजनाएं समझानी होंगी, साथ ही उनके परिवार के सबसे बड़ी समस्या क्या है यह जानना होगा। इस प्रकार से हमें गरीब परिवारों का प्राथमिक सर्वेक्षण करना होगा। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान हमें लोगों में कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी। सभी लोग एक ही प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, सबके हालात एक प्रकार के हैं, सबको एक प्रकार की रोजी रोटी मिलती है। इस प्रकार हमें गरीब परिवारों को चिन्हित करने में काफ़ी आसानी होगी। हम तय कर पाएंगे कि कौन सा परिवार स्वयं सहायता के रूप में संगठित हो पाएगा। इसके बाद हम गांव के मुखिया, अनुभवी बुजुर्गों एवं खासकर महिलाओं की एक सभा बुलाएंगे, और उसी वक्त यह भी बताएंगे कि समूह की बैठक कुछ देने के लिए नहीं बल्कि

गरीब परिवारों की सहायता एवं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए की जाती है। यहाँ हम उन्हें स्वयं सहायता समूह की विस्तृत जानकारी भी देंगे। एक स्वयं सहायता समूह में साधारणतया 10 से 20 सदस्य होते हैं। समूह के सदस्यों की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। समूह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक परिवार का एक ही सदस्य स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो सकता है। सदस्य एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। इसके बाद हमें स्वयं सहायता समूह के सफल संचालन के लिए एक नियमावली बनानी होगी। जैसे समूह द्वारा बैठक के लिए दिन निश्चित हो, बैठक नियमित हो, प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक रजिस्टर में लिखना एवं उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक हो, बचत की न्यूनतम राशि जो समूह तय करे अनिवार्य मासिक रूप से जमा किया जाए, बचत की राशि समूह बैठक में ही जमा किया जाए, जमा राशि बैंक में डालने के लिए बारी बारी से समूह की सभी सदस्य जाएं, नियमित बचत राशि जमा नहीं होने पर दंड की व्यवस्था हो, दंड की राशि समूह तय करेगा, लापरवाही बरतने पर समूह से हटाया भी जा सकता है। स्वयं सहायता समूह को लेखा बहियों एवं रजिस्टरों का भी रखरखाव करना होगा। सब प्रकार के लेन देन के लिए सरल और स्पष्ट बही का इस्तेमाल होना चाहिए। सभी रजिस्टर एवं बही खातों को समूह बैठक के दौरान लिखा जाना चाहिए। यदि समूह की महिला लिखने और पढ़ने में सक्षम नहीं है तो किसी और की मदद ली जा सकती है। दूसरे शब्दों में समूह की महिलाओं को निम्नलिखित रजिस्टर रखने होंगे, जैसे कार्यवृत्त पुस्तिका। इसमें बैठकों की कार्यवाही, नियमों एवं सदस्यों के नाम का रिकॉर्ड होता है। बचत एवं ऋण रजिस्टर, इसमें सदस्यों की बचत एक साथ दिखाई जाती है, ऋण ब्याज आदि भी लिखे जाते हैं। साप्ताहिक रजिस्टर, इसमें प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश लिखा जाता है। पासबुक, समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग पासबुक दी जाती है जिसमें उसका बचत एवं ऋण लिखा होता है। स्वयं सहायता समूह को बैंक से भी जोड़ा जा सकता है। स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद एक दो बैठक के उपरांत स्वयं सहायता समूह के नाम पर बैंक में खाता खोला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश जारी किए हैं जिसके तहत बैंक ऐसे खाते को अपनी शाखाओं में खोल सकते हैं। स्वयं सहायता समूह से निम्नलिखित कागजात प्राप्त करके बैंक स्वयं सहायता समूह के नाम पर खाता खोल सकता है। पहला, स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव। स्वयं सहायता समूह बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव समूह की बैठक में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से पारित करेगा, जिसकी एक प्रति बैंक में जमा करेगा। दूसरा, स्वयं सहायता समूह के तरफ से प्राधिकार। स्वयं सहायता समूह कम से कम 3 सदस्यों को प्राधिकृत करेगा जिनमें से कोई 2 संयुक्त रूप से खाता चलाएंगे। सदस्यों के 3-3 फोटो भी जमा करने होंगे। स्वयं सहायता समूह के नियमों की प्रति, यदि स्वयं सहायता समूह ने कोई नियम बनाए हैं तो उन नियमों की एक प्रति बैंक में जमा किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा ऋण, बैंक हमेशा ऋण स्वयं सहायता समूह के नाम पर देता है, व्यक्तिगत सदस्यों के नाम पर नहीं। सामान्यतः ऋण स्वयं सहायता समूह की सामूहिक बचत राशि के 1 से 4 गुना तक दिया जा सकता है। बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण देता है, समूह के सदस्यों को नहीं। अतः स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन अति उत्तम आवश्यक है। समूह को मिले कुल ऋण में सदस्यों को किस तरह से ऋण दिए जाएंगे यह समूह तय करता है। अपने सदस्यों को दिए गए ऋण की शर्तें, ब्याज दर, चुकौती की अवधि का निर्णय समूह अपनी बैठक में कर लेते हैं। बैंक चुकौती के लिए समूह के सदस्य सामूहिक रूप से जिम्मेवार होते हैं। समूह अपने सदस्यों से दिए गए ऋण की चुकौती समय पर करवाता है ताकि बैंक ऋण समय पर चुका सके। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों से कोई भी जमानत नहीं ली जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में जमा राशि को बैंक जमानत के तौर पर नहीं रख सकता। ऐसा करने से समूह अपने आंतरिक बचत में से समूह को ऋण

0: प्रदान नहीं कर सकेगा। स्वयं सहायता समूह को वित्त पोषण करते समय मुद्रा अंकित समझौता करना होगा, जिसके द्वारा दोनों पक्ष उल्लिखित शर्तों के पालन के लिए बाध्य होंगे।
1: देखें कितना नीमन जानकारी दीनी इंदु कुमारी। यहाँ के बतैनी कि आज के बचत ही कल के सुरक्षा बा, तो हमनी के समूह में मिल के बचत करे के चाहिए आ वो बचत ही हमनी के एक दिन मदद करी। तो इतना नीमन जानकारी दिहला खाती इंदु कुमारी के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी हमनी के आई थोड़ा संदेश सुन लिया, एक बाद हमनी के और चर्चा कर ली।
2: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता और सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल और सेवा का प्रचार,
2: स्थानीय और देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
3: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
2: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
3: डायल करें 800-001-4242।
2: नंबर फिर लिखी 800-001-4242।
1: देखी श्रोता भाई, कहल जाला कि जैसन खाइब अन वैसने हुई मन, मतलब कि हमनी के जीवन में भोजन के बहुते महत्व बा। देखी भोजन से हमनी के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आ विटामिन मिलेला, जमना से कि हमनी के निरोग रही न जा आ रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होला हमनी के जितने नीमन आ पौष्टिक भोजन कैल जाए। तो अब रह गेल कि हमनी के देश में तीन तरह के मुख्य रूप से मौसम होला, गर्मी जाड़ा आ बरसात। तो अभी बरसात के मौसम चल रहा बा आ बरसात के मौसम में हमनी के खान पान पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। कारण कि बरसात के मौसम में का होला कि समझे कि जौन पाचन शक्ति बा न ई थोड़ा कमजोर हो जाला। ऐसे यह दौरान हमनी के हमेशा कोशिश करे के चाहिए कि भोजन जौन करत अंजा वो हल्का कैल जाओ आ ताज़ा भोजन कैल जाओ आ भोजन ऐसन कैल जाओ जौन कि आसानी से पच जाओ। ऐसे हमनी के खाना जब भी खाइल जाओ तो गर्मे खाइल जाओ। देखिए श्रोता भाई, नमी के कारण अभी बरसात के मौसम में बैक्टीरिया ज़्यादा पनपे के संभावना रहेला। ऐसे हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि बाहर के खाना या बाहर के जौन ठेला पर के पकौड़ी बा या छोला बा इस सब से हमनी के परहेज करे के चाहिए आ बाहर के खाना लगभग ना खाए के चाहिए। कारण कि बाहर के खाना कब के बनल है एकर जानकारी हमनी के ना रहेला, ऐसे हमनी के तबीयत खराब भी हो सकेला। तो कोशिश करे के चाहिए कि अपना घरे बना करके ताज़ा भोजन ही कैल जाओ। एकरा साथे साथे कच्चा सब्जी आ सलाद खाए से भी अभी हमनी के बरसात में बचे के चाहिए। कारण कि एकरा अलावे मौसमी फल सूप आ उबलल जौन चीज बा एकर हमनी के सेवन ज़्यादा करे के चाहिए। देखी श्रोता भाई, बरसात के मौसम में स्वास्थ्य के दुरुस्त रखे खातिर आ संक्रमण से बचे खातिर खान पान से जुड़ल कुछ मुख्य बात हमनी के ध्यान देवे के चाहिए। जैसे कि हमनी के बरसात में खाए वाला जौन चीज बा वो हमेशा ताज़ा आ गर्म भोजन ही करे के चाहिए। एकरा साथे साथे अदरक तुलसी आ गिलोय आ हल्दी के काढ़ा हमनी के नियमित रूप से बरसात में पिए के चाहिए। एकरा से का होला कि यदि शरीर में कोनो तरह के रोग पनपे के संभावना बा तो ऊ खत्म हो जाला। एकरा साथे गर्मा गर्म वेजिटेबल या चिकन सूप पिए से भी इम्यूनिटी जोन बा तौन बढ़ेला आ पका हुआ भोजन हमनी के करे के चाहिए। एकरा साथे साथे अभी बरसात में का होला कि सुपाच्य भोजन खातिर हमनी के दाल आ खिचड़ी के प्रयोग करे के चाहिए। यदि मूंग के दाल आ चावल के खिचड़ी होके तो ई का होला कि हमनी के शरीर में आसानी से पच जाला आ इस स्वास्थ्य खातिर हमनी के अच्छा होला। तो बरसात के मौसम में कोशिश करे के चाहिए कि हमनी के खिचड़ी के प्रयोग कैल जाए। एकरा साथे साथे मसाला जौन बा अपन खाना पीना में हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि जीरा धनिया लहसुन आ हल्दी के भरपूर उपयोग करे के चाहिए। कारण कि खाना के पचावे में ये जौन मसाला बा जैसे कि जीरा भइल धनिया भइल ई ज़्यादा सहयोग करेला।

आ संक्रमण से लड़े के क्षमता भी एकरा में ज्यादा होला। तो हमने के अपना भोजन में कोशिश करे के चाहिए कि जीरा आ धनिया के प्रयोग ज्यादा कर जाओ। एकरा साथे साथे देखिए हमने के बरसात के मौसम में मौसमी फल बा, जैसे कि मौसमी फल में अनार बा, नाशपाती बा, जामुन जैसन मौसमी फल भी हमने के खाए के चाहिए। अब रह गिल कि इस तरह गिल कि हमने के खाए के चाहिए, लेकिन बरसात में कुछ ऐसन भी चीज़ बा जौन हमने के परहेज करे के चाहिए आ ना खाए के चाहिए। जैसे कि कच्चा सब्जी आ सलाद जौन बा, पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक भइल या पत्ता गोभी भइल, जौन बा एकरा में बैक्टीरिया के पनपे के संभावना ज़्यादा रहला। एक ऐसे बरसात के मौसम में ई पत्तीदार जौन सब्जी बा एकर प्रयोग कम करे के चाहिए। एकरा साथे साथे बाहर के खाना भी हमनी के ना खाए के चाहिए, जैसे कि बाहर में स्ट्रीट फूड भइल, जैसे कि चाट पकौड़ा समोसा या खुला में जौन बिके वाला सामान बा उ हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि उ खाए से बचल जाओ। एकरा साथे साथे पेट के संक्रमण एकरा खाए से संक्रमण हो सकेला, डायरिया भी हो सकेला। तो हमने के कोशिश करे के बा कि हमने के बाहर के खाना के भर बरसात समझे की परहेज कर जाओ। एकरा साथे साथे तला भुजा जौन सामान बा, जैसे कि समोसा बा, पकौड़ी बा, या बहुत तेल वाला जौन खाद्य पदार्थ बा ओकरा के खाए से भी हमने के पचे के चाहिए। कारण कि हमने के पाचन तंत्र जौन बा एकरा के तेल वाला चीज़ खाए खाना जौन बा ओकरा के पचावे में ज़्यादा मेहनत करे के पड़ला आ ओकरा से हमनी के शरीर में समस्या हो सकेला। एकरा साथे साथे बासी खाना भी हमनी के बरसात के मौसम में ना खाए के चाहिए। कभी कभी आदमी सोचलन कि फ्रिज में रख ले बानी खाना एकरा के खा लही, तो ऐसन खाना से भी हमनी के बचे के चाहिए। एकरा साथे साथे पानी वाला जौन फल बा उ भी हमनी के ना खाए के चाहिए, जैसे कि तरबूज जिसे जौना में ज़्यादा पानी बा, या वैसन फल जौना में ज़्यादा पानी होके ओकरा के हमनी के ना खाए के चाहिए। इस तरह से हमनी के बरसात के मौसम में अपन खान पान पर ध्यान रखे के चाहिए आ निरोग रहे के हमनी के कोशिश करे के चाहिए। तो कोशिश करें कि हर समय जब भी खाना खाएं तो ताज़ा भोजन बना लें आ ओकरा के खाएं, आ शाकाहारी भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं, रउरा स्वस्थ रहें। तो अब चले के अपनी हमनी के अपना खेती बाड़ी में। तो खेती बाड़ी में देखी मौसम पूर्वानुमान में बा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मतलब 8 जुलाई तक जिला में 1 से 2 स्थान पर गरज के साथ पानी भी हो सकेला, आंधी भी चल सकेला आ हल्का आ मध्यम वर्षा भी होके के अनुमान बा। हमनी के जिला में 1 से 2 स्थान पर काफ़ी वर्षा भी होके की संभावना बा। यह बीच अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% आ दोपहर में 25 से 30% रहे के संभावना बा। ऐसन अनुमान बा कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से समझी कि हवा चल सकेला। एह में हमनी के किसान भाई खाती सलाह बा कि आगामी दिन में वर्षा होके के संभावना बा, तो एकरा में खड़ा फसल बा जवन बा ओकर सिंचाई अभी हमनी के किसान भाई के चाही कि रोक दही आ खाद आ कीटनाशक के छिड़काव तब करी जबकि आसमान साफ होके। एकरा साथे साथे किसान भाई खाती धान संबंधी जवन हमनी के धान के खेती चल रहल बा एकरा खाती सलाह ई बा कि वर्तमान में मौसम कमजोर स्थिति के देखते हुए किसान भाई के सलाह दिहल जा रहल बा कि ऊंचा भूमि में धान के खेती ना करी। जौन किसान के पास सिंचाई के सुविधा उपलब्ध होके उ मध्यम अवधि वाला किस्म के बिचड़ा डाल सकिना, नमी ओकरा में रहे के चाही, एकरा अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करी। धान के किस्म जिसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि सीधा बुआई कर सकिना। यदि वर्षा होत होके तो धान के नर्सरी में जल भराव से बचाव खातिर जल निकाले के भी व्यवस्था हमनी के करे के चाहिए। एकरा साथे साथे देखी जे भी किसान भाई भिंडी के खेती के लिए बनी, भिंडी कद्दू खीरा नेनुआ और लौका के फसल के निराई गुड़ाई कर सकिना आ यदि ओकरा पर कीट के प्रकोप होके तो डाइमेथान 30 EC के 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर के दर से अपना फसल भिंडी के फसल पर छिड़काव कर सकिना। तो देखी श्रोता भाई अब स्टूडियो के घड़ी और अधिक कुछ कहे के इजाज़त नहीं के देत। चलत चलत सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार।

आलोक कुमार और पामेला जैन को अभी आपने सुना। गीतकार थे फणीन्द्र राव और संगीतकार सुनील महापाल। अगला गीत आवाज़ मोहन राठौड़ की, गीतकार हैं उमेश अनमोल, संगीतकार सुनील महापाल।

0: आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक पहलू पर नहीं बल्कि पूरी बात करेंगे। मान लीजिए आप ये विषय पहली बार सुन रहे हैं, ना कोई जानकारी ना कोई पूर्वाग्रह। आज हम शुरू से समझेंगे निसंतानता क्या है, क्यों होती है और विज्ञान इसका समाधान कैसे देता है, यानी IVF क्या है असल में। मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, MRCOG लंदन, और श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी पटना की प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञ। इनको हम नमस्कार करते हैं। और उससे पहले डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम शेयर करते हैं कि कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा सीधे सीधे। नंबर है 9162562266 9162562266। ये नंबर है और ये ममता का आंचल कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से, जो कि पटना के भिखना पहाड़ी मोड़ में है। आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, जैसा कि हमने कहा, बहुत बहुत नमस्कार आज के एपिसोड में।
1: नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं।
0: डॉक्टर श्रद्धा, सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, निसंतानता क्या है?
1: निसंतानता जानना बहुत जरूरी है उस दंपति के लिए जो इसे जूझ रहे हैं।
0: जी,
1: निसंतानता कहते हैं वैसे दंपति को,
0: हाँ,
1: जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं बिना किसी गर्भ निरोधक के,
0: हाँ,
1: और उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वैसे दंपति को कहा जाता है कि वो निसंतानता से जूझ रहे हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन अगर कोई दंपति जहाँ की महिला का उम्र 35 ईयर से ज्यादा है, तो वहाँ हम लोग एक साल रुकने के लिए नहीं बोलते, बोलते हैं 6 महीना तक ही कोशिश करें। और अगर,
0: हाँ,
1: अब अभी तक बच्चा नहीं ठहरा तो जरूरी है अब इलाज का,
0: हाँ हाँ,
1: और उन्हें इलाज कराना चाहिए। अभी तो आप किसी भी प्राथमिक कहीं भी इलाज करा सकते हैं जानने के लिए क्या कारण है।
0: जी।
1: और अगर अगले एक साल में आपको बच्चा ठहर जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रयास करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले ताकि वो आपकी बीमारी का बेहतर निदान कर सके।
0: एक बात पूछना चाहते हैं डॉक्टर श्रद्धा, कि क्या निसंतानता कोई श्राप या अभिशाप है?
1: नहीं, निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है। कोई कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि पिछले जन्म का पाप है, ऐसा कुछ नहीं। निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है, यानी कि मेडिकल कंडीशन है। जिस तरह से डायबिटीज एक बीमारी है, थायराइड एक बीमारी है, उसी तरह से इनफर्टिलिटी भी एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि निसंतानता का कारण जो होता है उसमें अक्सर लोग महिला को दोष देते हैं।
0: लेकिन डॉक्टर, एक सवाल और है कि जब ये बात है तो हमारे समाज में पहला सवाल अक्सर महिला से ही क्यों पूछा जाता है? क्या कमी है तुम में, ऐसा क्यों?
1: ये बहुत दुखद है और बहुत बड़ी गलत फहमी है समाज में कि अगर कोई दंपति निसंतानता से जूझ रहा है तो दोष हमेशा महिलाओं में दिया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि 1/3 कॉज निसंतानता के लिए, सिर्फ 1/3
0: जी
1: जो कारण होता है उसके लिए महिला जिम्मेदार होती है।
0: हाँ हाँ।
1: बाकी जो 1/3 कॉज है उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं और रेस्ट 1/3 जो कॉज है वो अनएक्सप्लेन्ड है, यानी कि हो सकता है महिला हो सकता है पुरुष हो सकता है दोनों हो। अगर कुल मिला के बोले तो निसंतानता जो कारण है वो दंपति का कारण होता है, वो सिर्फ किसी महिला के कारण नहीं होता है। तो समाज का उंगली उठाना सिर्फ औरत के लिए गलत है और उंगली तो किसी पे नहीं उठाना चाहिए। आप अगर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उंगली तो मत उठाइए।
0: एक बात यहाँ हमने कहा था लिसनर्स कि आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। नई बातें, नई पहलू और सारी चीजों पर खुल के बात आज के एपिसोड में होगा। और हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप बात कर लें श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी डॉक्टर श्रद्धा के नंबर पर। नंबर है 9162562266 9162562266। एक बात और कहना चाहेंगे, पैसा, अर्थ, हाँ, बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे जीवन में, हम समझ सकते हैं, मैं भी जूझता हूँ इससे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ गीत, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के बीच आ गया। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम ममता का आंचल, आकाशवाणी पर हर हफ्ते या सप्ताह आने वाला वो कार्यक्रम जो उन सवालों की बात करता है जिन्हें अक्सर घर के चार दीवारी के अंदर भी नहीं पूछा जाता।

0: लेकिन निदान कहीं न कहीं होता है। वैसे माता पिता के लिए श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी ने भी निदान निकाला है जिनके पास पैसे की समस्या है। अब आप इलाज कराएं, आराम से बेझिझक अपना समझकर और टुकड़ों में पैसा दें, यानी ईएमआई पर पैसा देने की व्यवस्था श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी ने की है। 24 महीने में आप पेमेंट कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों, आपसे भी हमारा सादर निवेदन है, आग्रह है कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, और अगर जो बच्चा नहीं है, अगर शादी के 2-3-4 साल हो गए तो आईबीएफ पद्धति, या हम आईबीएफ भी नहीं गए, आप सीधे सीधे ये नंबर है ना 9162562266, डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है, इस पर बात कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, कारण क्या है? शरीर, उम्र या जीवन शैली क्या है?
1: निसंतानता का कारण कुछ एक कहना मुश्किल है
0: जी।
1: हो सकता है पुरुष में दिक्कत हो सकता है महिला में दिक्कत हो सकता है जीवन शैली में दिक्कत हो।
0: जी जी।
1: अगर हम महिला से ही पहले बात अगर शुरू करें
0: करे, हाँ।
1: तो हो सकता है कि उसके अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा हो।
0: हाँ।
1: एक बड़ा कारण जो बहुत कॉमन होता जा रहा है पीसीओएस या पीएमओएस, ये वो कंडीशन है जिसमें शरीर, महिला के शरीर में हार्मोन यानी कि कुछ केमिकल का संतुलन बिगड़ जाता है।
0: हाँ।
1: उसके कारण उन्हें अंडा नहीं बन पाता है। और एक महिला में अंडा बनना बहुत जरूरी होता है अगर उसे बच्चा चाहिए तो।
0: जी जी।
1: तो हो सकता है अंडा बनने में दिक्कत हो।
0: हाँ।
1: हो सकता है महिला का जो नली ट्यूब जहाँ की अंडा और शुक्राणु आके मिलता है, हो सकता है वहाँ ब्लॉकेज हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है फाइब्रॉइड हो
0: जी।
1: ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण एक महिला को बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकती
0: है। और पुरुषों की बात करें तो?
1: हाँ, अगर पुरुष में बात करें तो हो सकता है कि पुरुष की शुक्राणु में कमी हो, शुक्राणु की संख्या ठीक हो लेकिन उसकी चाल गड़बड़ हो।
0: हाँ।
1: या फिर शुक्राणु की बनावट गड़बड़ हो
0: जी।
1: और भी दिक्कत हो सकते हैं, तो पुरुष भी कारण होते हैं निसंतानता के। बात करें जीवन शैली की, तो जीवन शैली आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: क्योंकि लोग अब ज्यादा जंक फूड्स की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, घर का खाना कम पसंद करते हैं, लोग मोबाइल ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, उसके कारण जो कहा जाता है 7-8 घंटा सोना है वो लोग ठीक से नींद पूरा नहीं कर पा रहे।
0: जी, जी, जी।
1: नींद भी उतना ही जरूरी होता है निसंतानता के इलाज में। हो सकता है धूम्रपान, ये सब के कारण भी नींद कम आता है, ये सब भी हो सकता है। तो अगर आप जीवन शैली भी ठीक कर लेते हैं और अगर यही कारण है निसंतानता का, तो सिर्फ जीवन शैली ठीक करने से भी बच्चे ठहर जाते हैं।
0: और उम्र की बात करें तो उसका क्या रोल है इसके अंदर में?
1: देखिए, उम्र तो सबसे जरूरी, अगर निसंतानता के इलाज में हम लोग एक चीज की, कोई मुझसे ये पूछे कि सबसे जरूरी बात क्या है, तो मैं बोलूंगी उम्र। हम बार बार रेडियो में आते हैं निसंतानता इनफर्टिलिटी के लिए अवेयरनेस इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उम्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वैसे दंपति जिनको बच्चा चाहिए वो ये जान लें कि जैसे जैसे उम्र निकलता है उस दंपति का प्रजनन शक्ति क्षमता जो होता है वो घटता जाता है
0: जी।
1: क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद और अंडा के घटने के बाद इलाज जटिल होता जाता है।
0: अच्छा, एक बात बताइए, अब सीधे सीधे चलते हैं, आईवीएफ की बात करते हैं। हम लोग आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान है और बहुत सक्सेस रेट भी अच्छा है, तो असल में आईवीएफ क्या है, पूरी प्रक्रिया? हाँ, जरा आसानी से और सरल शब्दों में जल्दी जल्दी बता दीजिए।
1: बिल्कुल, निसंतान दंपति को ये भी जानना चाहिए, अगर आपको दवाई से बच्चा नहीं ठहरा,
0: हाँ,
1: शादी के बहुत सारे साल हो चुके हैं और बच्चा नहीं ठहरा, तो आईवीएफ आपके लिए एक बहुत ही सफल पद्धति है जिससे बच्चा ठहर सकता है
0: जी।
1: और इसका सक्सेस रेट डिपेंडिंग कि उस दंपति को क्या दिक्कत है 50-60% भी हो सकता है।
0: हाँ।
1: तो आईवीएफ में हम करते क्या है, पहले मैं बता देता हूँ
0: आपका नंबर, अगर कहीं कोई समस्या हो ये बातें सुनने के बाद या कुछ संशय हो तो 9162562266 9162562266 पर डॉक्टर श्रद्धा से बात कीजिएगा। हाँ, आगे
1: देखिए, आईवीएफ में सबसे पहले तो कुछ जांच करते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो यूजुअली मासिक के दूसरे दिन से शुरू होता है
0: जी।
1: औरत को 10 से 12 दिन सुई पड़ता है और उसके बाद जब अंडे बन जाते हैं तो बेहोश करके उनसे अंडा निकाल लिया जाता है और इस

0: प्रोसेस में कहीं भी किसी को दर्द नहीं होता है। और जब अंडे निकाल के उसको पुरुष के शुक्राणु से यानी कि उसके पति के शुक्राणु से मिला के भ्रूण बनाया जाता है। निसंतानता में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि भ्रूण नहीं बनता है, तो IVF इस चीज को बाईपास करता है, यानी कि भ्रूण हम लोग अपने IVF लैब में बनाते हैं और वो उसी तरह से स्वच्छ होता है जिस तरह से माँ का गर्भ स्वच्छ होता है। और उसके बाद जब भ्रूण बन जाता है तो माँ के गर्भ में जब लाइनिंग परत बन जाती है बच्चेदानी की, तो माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है और यही बच्चा 5 दिन का बच्चा डाला जाता है और 9 महीने तक ये माँ के गर्भ में रहता है।
1: एक बात बताइए, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, भ्रांति भी है, क्या IVF से उत्पन्न बच्चा जो है ना, वो नॉर्मल बच्चे की तरह होता है?
0: बिल्कुल, IVF से जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इतिहास गवाह है इसके लिए, मैं बोलूं तो पिछला 50 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे IVF से हुए हैं।
1: वो बात बताइए ना जो पहली हुई IVF।
0: हाँ, बिल्कुल। और विश्व की पहली जो IVF लड़की जो लुईस ब्राउन आज करीब 50 साल की हो रही हैं, वो बिल्कुल सामान्य है बाकी महिलाओं की तरह, और उनको अपना बच्चा खुद से हो चुका है,
1: नॉर्मल वे में
0: हुआ, उनको कोई IVF की जरूरत नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कितने सारे बिजनेसमैन बहुत सक्सेसफुल इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो सारे IVF बच्चे हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स उनके बच्चे IVF से हैं। लेकिन ये तो चकाचौंध वाली बात हुई, लेकिन सामान्य लोग के भी बच्चे IVF से ही हुए हैं और बिल्कुल वो सामान्य बच्चे की तरह हैं। इनफैक्ट वो लोग थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। IVF के बच्चे, ये भी देखा गया कि वो सामान्य बच्चे से थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
1: तो दो बच्चे भी एक साथ होने के चांसेज होते हैं?
0: बिल्कुल, IVF में करीब 25-50% चांस होता है कि जुड़वा भी हो सकता।
1: तो एक भ्रांति थी जिसका हमने आपसे समाधान ले लिया है। अच्छा, ये कहा जाता है डॉक्टर श्रद्धा कि ये सिर्फ बड़े शहरों के अमीर लोगों के लिए IVF है, क्या कहना चाहिएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। IVF अब बिहार में, आपके पटना शहर में और भी कई जगह अवेलेबल है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आप जहाँ भी इलाज करा रहे हैं क्या वो सरकारी ARTI नियम का पालन करता है, यानी कि मान्यता प्राप्त केंद्र में आप अपना इलाज कराएं, और ये सबों के लिए अब अवेलेबल है।
1: तो डॉक्टर श्रद्धा, आज सचमुच आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही अलग था, और आज जिन्होंने भी ये सुना होगा बहुत सारी भ्रांतियां आपकी दूर हुई होंगी। बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, बीमारी है, ठीक हो जाएगा, और नहीं तो फिर IVF है ना, और डॉक्टर श्रद्धा तो है ही है। आप फोन कर सकते हैं जानकारियों के लिए, 9162562266 ये नंबर है, 9162562266। ये आराम से बोलते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए कि आप नंबर को फॉलो कीजिए और फिर अपने नीचे अपने बच्चों तक उसको आगे बढ़ाइए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, लेकिन चलने से पहले एक बात और बता दें कि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में पैसा आरे नहीं आता है, EMI पर आप 24 महीने में इलाज करवा कर भी पैसा दे सकते हैं। फिलहाल ढेर सारी बातें होंगी, आप हमें फोन कीजिएगा, सवाल पूछिएगा, जिससे हमें आसानी होगी कि आपकी क्या समस्या है उसका समाधान हम डॉक्टर श्रद्धा से ममता का आंचल कार्यक्रम में निकलवा सकें। तो चलते हैं, डॉक्टर श्रद्धा निकलते हैं, कहते हैं नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।

रोहतास के तीन स्थल पर्यटन होमस्टे योजना में हुए शामिल। शेरशाह मकबरा, मांजर कुंड व धुआं कुंड के आसपास रहने वालों के लिए पंजीकरण शुरू। घर को होमस्टे बनाने पर 10 लाख तक

रोहतास पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपित लोगों को पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते और दस्तावेज हासिल करते थे। मामले का खुलासा शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता में किया। इंद्रपुरी डैम में जलस्तर कम होने के कारण लोगों के निचले हिस्से में उतरकर स्नान करने की सूचना पर प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए आम लोगों से डैम के नीचे नहीं जाने और स्नान से परहेज करने की अपील की गई है। प्रशासन ने बताया कि डैम में किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है। जनता दरबार में पहुंचे 10 मामले। जी हां, जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने शनिवार को समरालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने शनिवार को संजौली प्रखंड का दौरा कर डिग्री महाविद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। पीएचसी के निरीक्षण के दौरान एक्सरे कक्ष बंद मिला। चाबी उपलब्ध नहीं होने पर ताला तोड़कर कक्ष खोला गया। इस पर डीएम ने अस्पताल प्रबंधक को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी किशोर पासवान, थानाध्यक्ष पूनम कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बारिश की बेरुखी से सूख रहे धान के बिचड़े किसान परेशान। जिले में समय पर बारिश नहीं हुई तो रोपनी और उत्पादन दोनों पर पड़ेगा असर। कृषि विभाग ने किसानों को उपलब्ध सिंचाई संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और विभाग द्वारा जारी कृषि परामर्श का पालन करने की सलाह दी है। विभाग लगातार मौसम की स्थिति पर नजर रखे हुए है और किसानों को आवश्यक तकनीक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। डेहरी स्थित BSAP 2 परिसर में शनिवार को स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महिला पुरुष जवानों गर्भवती महिलाओं और बच्चों समेत 80 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सा परामर्श दिया गया। महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलम ने गर्भवती महिलाओं की जांच कर सुरक्षित मातृत्व नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और पौष्टिक आहार की जानकारी दी। अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार।

0: से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीवीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीवीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने श्री किशोर के नाम का ऐलान किया है। पार्टी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी तय की है उसका सम्मान करते हैं।
2: बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जन सुराज के विचार से इस प्रयास से जुड़े थे, तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं।
0: इधर भाजपा ने भी बांकीपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज 80वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में आयोजित जयंती

0: समारोह में कहा कि रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पासवान की भावनाओं के अनुरूप पार्टी का विस्तार किया जा रहा है।
1: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी के संस्थापक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह को इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार की सोच से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं।
0: इधर पटना समेत प्रदेश भर में रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों, शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के दोइया में शांति मनी पेपर मिल के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पेपर मिल परिसर का भ्रमण कर उत्पादन प्रक्रिया और अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण भी किया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, गया जी और जमुई समेत प्रदेश के 30 से

0: अधिक प्रमुख शहरों में आधुनिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपो में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, शॉपिंग क्षेत्र, होटल और अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से आज पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के बगहा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: दिनांक 6 जुलाई राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज निधन हो गया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में तीजन बाई के योगदान को देश श्रद्धापूर्वक याद रखेगा। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री चौधरी ने कहा कि उनके निधन से भारतीय लोक कला और संस्कृति को अपूर्णीय क्षति हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मंझोलिया रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS गुरुप्रकाश ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक, सिग्नल प्रणाली, इंटरलॉकिंग व्यवस्था और रेलवे क्रॉसिंग समेत अन्य कार्यों का जायजा लिया। इस क्रम में CRS ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी किया। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही लाइन होटल के पास चार पहिया वाहन ने एक खड़े कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे वाहन सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संचालित खनन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत TB मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया ने कहा कि सरकार जिले को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: शिवहर जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि विभाग ने इस मौसम में 26,000 हेक्टेयर में

0: खरीफ फसलों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। युवा रोजगार और कौशल विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय की ओर से समाहरणालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही स्वरोजगार तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ने वाली योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, मानव तस्करी की रोकथाम और अनाथ तथा बेसहारा बच्चों के पुनर्वास की समीक्षा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मंडल कारा में स्प्रिया योजना 2025 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षात्मक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल केवल सजा काटने का स्थान नहीं बल्कि सुधार गृह है और बंदियों को पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कृषि विभाग के तत्वावधान में खरीफ महाअभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को खरीफ फसलों के आधुनिक ढंग से खेती, उन्नत बीजों, वैज्ञानिक तकनीकों तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इधर बारिश और संभावित बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की सभी तैयारियां समय से पूरा करने, आपदा संपूर्ति पोर्टल पर लाभार्थियों का विवरण अपडेट करने और नए पंजीकरण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंककार सलाहकार सह समीक्षा समिति की बैठक में विभिन्न बैंकों एवं ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित बैंक प्रबंधकों को शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करने तथा पात्र उद्यमियों को रियायत दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विधिक जागरूकता एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से जिला इकाई ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, डिजिटल परिवर्तन और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए गए। शिविर में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना की सांकेतिक चाबियां, जॉब कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज भी वितरित किए गए। जिले के विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। ग्राम विकास सभाओं में पंचायत विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने कहा कि जन भागीदारी के बिना समग्र विकास की कल्पना संभव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात का सामूहिक प्रसारण भी किया गया, जिसे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सुना। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई जी राम जी योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला मुख्यालय में जन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को योजनाओं के उद्देश्यों और कार्यान्वयन की जानकारी दी गई। जिले में मुहर्रम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में तजिया जुलूस निकाले गए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत विधिक सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके संचालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो कामगारों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।

0: महिषी कार्यक्रम ई मन पसंद।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा।

डॉन फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार की, अनजान की रचना थी, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने को सुनने के लिए हमें ईमेल किया था। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगिया, नमन डींगिया और अपार डींगिया।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अभिमान से, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गाने को सुनना चाहा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली झलना जा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश आनंद, आशुतोष, अमिताभ, पप्पू, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा।

हर जाए फिल्म का गाना आपने सुना, आवाज़ें थी, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, निदा फाजली की रचना थी, धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। इस गाने को सुनना चाहा था आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर, वैशाली शैलेश ग्वाड़कर, सुमित ग्वाड़कर, कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर, परी और प्रिंस एकांश ग्वाड़कर। इसी गाने की फरमाइश की थी, हमें ईमेल किया था नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकट प्रवीण। अगला गाना फिल्म आया सावन झूम के, इस गाने के लिए हमें ईमेल किया है गांधी चौक बड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन झूम का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथी ने, आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कुदरत का कानून, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ें थी अलका याग्निक और साथियों की, समीर की रचना थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने को सुनने के लिए हमें ईमेल किया था फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मोहरा से, गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार विजू शाह। ईमेल करने वाले हमारे श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आरती, आकर्षण जयश्री।

की रचना थी, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने को सुनना चाहा था, इसके लिए हमें ईमेल किया था। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार डूंडी, पुषेंद्र कुमार डूंडी, इसी गाने को सुनना चाहा है। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना मुन्नी कुमारी और चांदनी कुमारी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म इंतकाम से, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार हैं राजेंद्र किशन, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ईमेल करने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पगला कहीं का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गाने को सुनना चाहा है, हमें ईमेल किया है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनय जायसवाल।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

तेज मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख

0: उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिनभर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवस

0: तारा
1: सेट अप एन
0: सांस्कृतिक
1: एग्जीबिशन
0: और
1: ऑन दैट
0: शैक्षिक
1: वी
0: आदान
1: हैव
0: प्रदान वर्ष
1: कंपाइल्ड
0: के
1: द
0: रूप
1: बुक
0: में
1: ऑन
0: मनाएंगे।
1: टैगोर
0: इस
1: इंडोनेशिया
0: अवसर पर
1: टू
0: एक
1: अदर
0: विशेष
1: लैंग्वेजेस
0: प्रदर्शनी
1: एंड वी
0: आयोजित
1: विल
0: की गई
1: सेंड
0: है।
1: लाइक अ
0: हमने
1: फिजिकल
0: इंडोनेशिया में
1: ऑफ
0: टैगोर
1: ईयर
0: विषय पर एक
1: कमेमोरेटिंग
0: पुस्तक
1: टैगोर
0: भी तैयार
1: विजिटिंग
0: की है,
1: द
0: जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: इंडोनेशिया।
2: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है।

जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। महफिल कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए गज़ल। आवाज़ है गुलाम अली की, फैज़ अहमद फैज़ की रचना है, धुन बनाई है रफ़ीक हुसैन और गुलाम अली ने।

महफिल कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गज़ल। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया जाता है, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमि

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के प्रधान कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए एल्बम गीत।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आवाज़ थी नेहा कक्कड़ की और गुरु रंधावा की। अगला गाना एल्बम ए दिल से, आवाज़ अमृता भारती और अरुण कुमार निगम की।

बाखुदा एल्बम का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी ओए कुणाल की, मनीष अग्निभोज की रचना थी। कार्यक्रम का अगला गीत आवाज़ आनंद तिवारी की, एल्बम का नाम बात ही बात में।

आवाज़ें हैं आयुष्मान चौधरी और राजमणि की, नरेश कुमार त्यागी की रचना है, धुन बनाई है नरेश कुमार त्यागी ने, एल्बम का नाम बदनाम हुए।

0: वक्त तो गुजर जाता है पर उसकी छोड़ गई यादें दिल में कसक बनकर उम्र भर धड़कती है।
1: अभी अलविदा मत कहो।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। पेश है कल यानी 6 जुलाई के कार्यक्रम का विवरण एवं मौसम पूर्वानुमान।

सुबह 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी आपको सुनवाएंगे सुबह 8:20 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमालिका लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 9:10 पर। घूमता माइक्रोफोन फोन इन कार्यक्रम ये कार्यक्रम आप सुनिएगा सुबह 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 10:45 पर।

शाम का सभा, इसके स्वागत कीजिएगा। भक्ति संगीत कार्यक्रम से कार्यक्रम होगा वंदन, समय होगा शाम 5:10 पर। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत सुनिएगा शाम 6 से। भोजपुरी बुलेटिन समाचार हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से, समय होगा शाम 6:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:10 पर। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे शाम 6:40 पर। और प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7 से। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे ई मनपसंद आपको सुनवाएंगे शाम 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे रात्रि 9 से। बंदगी ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। एल्बम गीतों का कार्यक्रम रस रंग लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10 से। और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर।

और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 4 से 8 जुलाई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% तथा दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की

अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों और मौसम की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की।